नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते यह है आकाशवाणी जलंधर केंद्र का एफएम रेनबो चैनल है। अज वीरवार है, शक संवत 1947 दे विसाख महीने की 31 तारीख है। तारीख तद अनुसार ईस्वी सन 2026 दे मई महीने की 21 तारीख है। इस वेले सवेर के 5:58 हो रहे हैं। साड़ी अज की सभा हुण शुरू होंदी है। एफएम रेनबो अपने सारे स्रोतियां दा निघा स्वागत करता है।

8:02 ते होएगा प्रोग्राम मस्ती जंक्शन। तुसी अपनी फरमाइशां पूरी करा सकते हो हिंदी ते पंजाबी फिल्मां दे गीतां दी। प्रोग्राम रहेगा दिल चाहता है ठीक 9:02 ते। रात नूं होर खास ते महफिल लगाएगा प्रोग्राम शामे गजल ठीक 10:00 तो लैके 10:03 तक। 10:03 तो लैके 11:00 तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। FM न्यूज़ हेडलाइंस तुसी सुनोगे आपो अपने टाइम ते। ए सन साढ़े आज रात 11:00 तक दे प्रसारित होने वाले खास प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा।

जी फिर उठ गए सारे। गुड मॉर्निंग हो गई सारिया दी। कि हले भी थोड़ा जहा अलार्म चेक चेक करके आप वेख रहे हैं। हले तो कोई नहीं, 7 ही बजे, 7:09 ही तो मिनट होए। हले थोड़ा जहा 5 मिनट होर सो जाने हैं। बिल्कुल जी, फिर मम्मी दी यही आवाज आती है, काके उठ जा। चलो खैर ये तो गल्लां होंदियां ही रहणगियां, लेकिन अज एक होर प्यारे जी गल बारे गल करते हैं कि सानू ना हमेशा यही चीज़ सताउंदी है कि जदों साडे कोल जिहड़ी चीज़ हुंदी है ना, मतलब कोई भी, असं किसी परसन की गल कर रहे हैं या किसी होर चीज़ की गल कर रहे हैं, जो साढ़े कोल होंदी है ना असं उसकी इन्नी अहमियत जानते नहीं हाँ, लेकिन जो वो साढ़े तो ओली होने लगती है, मतलब दूर होने लगती है, फिर सानू उसकी जिहड़ी अहमियत है ना उदों उस वेले समझ आता है। किसी तो दूरियां ही सानू दसदियां है कि वह साढ़े दिल के किन्ना करीब है। कहते हैं ना उदा भी कि जो प्यार होंगे ना दूर दूर का बहुत चंगा लगता है, इस करके होंगे दोस्तों। जो कोई अपना साढ़े कोल होंगे तो असं अक्सर वो वैल्यू ना समझ नहीं पाते, पर जदों वो दूर चला जाता है सानू उदों पता लगता है कि वह साड़ी किन्ना क्लोज सेगा। दूरियां सिर्फ फिजिकल नहीं होंदिया, पर दिल नाल जुड़िया हो कदे दूर भी नहीं जाता, ये भी गल सच्ची है। हुण दूरियां की गल कर लीए तो कदे किसी दोस्त की याद आ जाती है, कदे माँ के हाथ की रोटी आ जाती है, जो असी कितने होस्टल के रहने अपनी जॉब के लिए सानू दूर कितने जाना पैंदा उदों सानू साड़ी माँ की, साड़े फादर साहब की, साड़े भैन भरा की, साड़े सिबलिंग्स सारिया की याद आती, पूरी फैमिली की याद आती है। तो कदे किसी खास इंसान की कोई एक आवाज़ कन्ना च पै जाए ना, फिर सानू लगता हाँ ये तो वही है। ये सारियाँ दूरियां ना सानू उदों ही महसूस होंदियां ना जिहड़ा साडे दिल दे करीब होवे, यानी कि जिस इंसान दे नाल साडा ज़्यादा लगाव नहीं हुंदा जी, वो कदे दूर हो भी जावे सानू इन्ना महसूस नहीं हुंदा, पर जे किसे दी दुनिया सानू महसूस हो रही मतलब दिल दे बहुत खास है। इस करके जे कोई तुहाडे नाल

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मेरा एक जिद्दी गुआंडी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मन्नन तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सब का बिजली बिल

खेत्री समाचार अकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

जी दोस्तों, तो सारे ट्यूनिंग कहते हैं 102.7 FM रेनबो दे नाल नाल 103.6 MHz वी। ते मैं अपने सारे लिसनर्स जिहड़े सानू हुणे हुणे जिन्हां ने ज्वाइन किया उन्हां दा स्वागत करदी हां साडे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच।

इंडिया कोल जाके जिसे मोबाइल ऐप भी है फूड सेफ्टी कंटैक्ट के नाम तो उसनों डाउनलोड करके तुसी अपनी शिकायत उत्थे कर सकते हो या फिर तुसी FSSAI दी ऑफिशियल वैबसाइट पर जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। जिदा ही तुसी इस वैबसाइट नूं ओपन करोगे तुहानूं बहुत सारिया ऑप्शनस मिलनगियां जिदा कि कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स ने उन्हां दे कीड़े कीड़े पैनल दे मैंबर ने उन्हां दा ऑफिस नंबर भी तुहानूं मिल जाएगा उन्हां दी जिहड़ी है वैबसाइट तुसी उन्हां नाल गलबात कर सकते हो वह भी तुहानूं उत्थे मिल जाएगी। इस करके जिहड़ियां चीज़ गलत ने उन्हां बारे ते आवाज़ उठानी ही चाहिए है। ते लो जी ये सीगा साडे गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम दा आखिरी जड़ा मैसेज सीगा ते नाल ही आखिरी जड़ा हुण मैं गीत लगान जा रही हूँ। इस करके स्टे सेफ हाइड्रेटेड रहो पानी पीना बहुत जरूरी है। कई दी कपैसिटी होंदी है 3-4 लीटर पी जांदे है दिन दे विच ही, कई दी कपैसिटी होंदी है कि बस 1-2 लीटर भी, अते कई दे बिल्कुल ही 2-3 घुट दे विच ही रह जांदे। इस करके जिन्ना हो सके पानी पीण दी कोशिश करनी चाहीदी है ते पानी खाली फुका पानी ना पियो, हल्का जिहा ब्लैक सॉल्ट पा के पुदीना पा के हल्का जिहा नींबू पा के ये पीना स्टार्ट कर सकते हो। स्किन जिहड़ी आ वी ग्लो भी करेगी ते हाइड्रेटेड भी रहो हो गए तुसी। ते जाना कितने नहीं है मैं आ रही हूँ वापस।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चावान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

जी दोस्तों, म्यूजिकली योर्स। तो सारिया ने ट्यूनिंग किया 102.7 FM रेनबो। तो हुण वेला हो गया साडे प्रोग्राम अड्डी टप्पा दा, जिदा मैनू लगता है तुहानू सारिया नू बहुत ही तुसी एक्साइटेड रहिंदे हो, क्योंकि गाने ते फिर लगने हैं ना ढोल धमाके वाले ही, ते जिहदे विच अड्डियां थले लगणियां है ते है ही है, नचना टप्पणा ते है ही है, ते अपनी मॉर्निंग नू होर वी एनर्जेटिक बनाउणा है।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 तो प्राप्त की जा सकती है।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा। लड़ीवार
0: नाटक होया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के सरकारी दौरे के आखिरी पड़ाव च इटली की सफल यात्रा के बाद नवी दिल्ली वापस परत आए ने। केंद्र सरकार ने नीट यूजी मोड़ परीक्षा तो पहला अफवाहों ते फर्जी पेपर लीक खबरां ते काबू पाउण लई मुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नूं निर्देश जारी कीते ने। पश्चिमी बंगाल सरकार ने भारत बंगलादेश सरहद दे वार लाउण लई BSF नूं जमीन सौंपण दा काम शुरू कीता। अज देश भर विच दहशतगर्दी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल विच पाकिस्तान दे नसलकुशी दे इतिहास दी निखेपी कीती है। पंजाब दे राजपाल अते चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी अपील दी हिमायत करदियां ऊर्जा संभाल अते चुकिरदा सुरक्षा बारे एक प्रेरणादायी पहल दी शुरुआत। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दे आर्थिक अपराध विंग लुधियाना ने पंजाब राज बिजली कारपोरेशन लिमिटेड दे सबका मुख प्रबंधकी निर्देशक KD चौधरी अते सबका सीनियर XEN संजीव प्रभाकर नू एक क्लोनाइजर नाल मिलीभगत करके कथित तौर ते सरकारी फंडा दी दुरवरतों करन दे इल्जाम हेठ गिरफ्तार कीता है। उत्तरी रेलवे दा फिरोजपुर डिवीजन रेल मुसाफरां दी सहूलत लई गर्मियां दियां विशेष रेल गड्डियां चला रहा है। पंजाब विच दो राजा व्यापक पनीर सैंपलिंग मुहिम चलाई गई। सेहत मंत्री बलबीर सिंह ने कहा है नियमां दी उल्लंघना करन वाले किसी भी खुराक कारोबारी ऑपरेटर खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर अते फिरोजपुर विच तीन वख-वख कारवाइयां दौरान एक पिस्तौल 14 किलोग्राम

0: पर तलोचन निकी लव जी चेक ऑडियो लेवल ऑफ मैसेज एंड कंसोल कीप स्पीकर ऑफ द फोन क्लोज टू माइंड ओके जी अगे देखते हैं फिर सानू मैसेज किना ने किया तो की कहना चाह रहे ने वाह साढ़े दोस्त सानू प्रॉपर एन इनफॉर्मेशन दे रहे आज मैंने लगता बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव ने साढ़े दोस्त लो जी अगला मैसेज सुनते हैं की कहना रहे चाह दी कोई कहानी कोई रेसिपी या अपनी जानकारी
1: राज मैन जी
0: जी
1: सानू ते तमाम दोस्तों जसबीर सिंह दूड़ा वालों प्यार भरी सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल
1: सो अज बेटा जी तो तुसी गुड मॉर्निंग शो च जो चाह बारे गल की है
0: जी
1: दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिथे चाह नहीं चल रही
0: चाह
1: माड़ी नहीं है पर ज्यादा चाह का नुकसान है दो टाइम चाह पी और थोड़ी कोई नुकसान नहीं है खासकर ओल्ड एज से चाह बहुत ही जरूरी है साढ़े आजमपुर च साढ़े बहुत ही अच्छे दोस्त मंगत करूड़ीमाल जी साढ़े बड़े अच्छे दोस्त है बड़े नेक इंसान है बहुत चाह अच्छी बनाते हैं दूरों दूरों चाह पी आते हैं
0: जी
1: सो जो मिलावट बारे तुसीं गल कीती आ अज दे समय च कोई ऐसी चीज नहीं जिस मिलावट नहीं हो रही मिल्क लै लो पनीर लै लो कोई सब्जी या फ्रूट है स्प्रे टीकियां वाली सब्जियां फ्रूट आ रहे हैं जो कि किस्म की जहर ही है
0: जी
1: जो साढ़े भराए काम करते हैं चीज अच्छी नहीं है दूसरे को जहर खिला के जो यदा भला नहीं होंगे सो बेनती है काम ना कर सो साढ़े ममिकरी मैन मिंटू चंदेल जी बहुत अच्छी म्यूजिक करते हैं चावा जी उन्होंने 100 चो 100 नंबर दिने उन्होंने
0: अच्छा जी
1: सो इस ही शो च किरण अरोड़ा जी ने जो एक बार आख्या सी कि अगर कोई दोस्त एक दूसरे को याद करता है इस शो च तो कोई बुरी गल नहीं है इस उसका हौसला बढ़ता ये सच्चाई है जी क्योंकि असं एक परिवारिक मैंबर हैं एक दूसरे का सत्कार करते हैं साढ़े भुपिंदर जी चाह जी है अटूट वाले अमनदीप जी है कुदे चंद्र जी है सारे बहुत बहुत अच्छिया अच्छिया जानकारियां दे रहे हैं बहुत अच्छा लगता सो सब दे सुख मंगता होया तंदुरुस्ती मंगता होया मैं जसबीर सिंह दूड़ा धन्यवाद जी
0: धन्यवाद जिदा कि जसबीर जी ने किया है कि एक दूजे दे नाल आकाशवाणी दे नाल असी जुड़ते हैं दोस्त बन जाते हैं हुण देखो एक इंसान एक थां ते बैठा होया है दूजा इंसान किसी होर थां ते एक दूजे नूं नहीं जानते लेकिन रेडियो दे माध्यम दे नाल असी एक दूजे नाल जुड़ जाते हैं इहो जिहे प्रोग्राम साडे बने हुए है जिक दिल अपना पंजाबी हो गया है या होर भी प्रोग्राम ने जिहदे विच कई वार फरमाइशां आउंदियां एक दूजे दे नाल विचार सांझे किते जांदे आपस दे विच जुड़ जांदे आ इही ते है रेडियो की खूबसूरती साढ़े आकाशवाणी की जी खूबसूरती चलो जी देखते हैं होर कि मैसेज आए ने एक होर ऑडियो मैसेज आ गया सुनते ने कौन ने ते चाह बारे चर्चा करेंगे या अपनी कोई चर्चा
2: हैलो दिल अपना पंजाबी राहिल मैडम जी वेरी गुड मॉर्निंग सारे दोस्तों नू प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल मैडम जी आज इंटरनेशनल टी डे है ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਿੰਗ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ ਅੱਜ ਟੀ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਚਾਏ ਚਾਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੱਤੀਆਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਣਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਬਾਲਾ ਦਵਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਦਾ ਨਮਕ ਔਰ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੀਣੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਜੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੁਛ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਹੋਰ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ

0: मैडम जी, मैं तुहाडे अपने किरण नरूला ग्रीन पार्क कपूरथला।
1: जिदा कि किरण जी ने कहा कि चाह जिहड़ी है ना उहदा दी कमजोरी हो सकती है कि एक कप चाह पी ली तो एक होर चाहिए। कई बार साडे जिहड़े पेरेंट्स उन्हां नूं वी वेख्या जांदा है कि जदों चाह पी लैंदे सवेरे तड़के उठ जांदे, सवेरे 5:30 हो गए या 6 बजे उठ के ना, मतलब काम कुम करके काम संवार के चाह पीनी शुरू कर देंगे। फिर जो बच्चे उठते हैं 7:30 या टाइम जो भी है उन्होंने कहें जो चाह बना रहे हो चल कोई नहीं मेरे लिए भी एक कप धर ली तो उदों भी चाह हो जाती है। फिर ज़्यादा जी चाह पीना है ना वो भी नुकसानदायक। तो एक होर कि चाह बहुत नुकसानदायक है वह दस दी हाँ। जो आप चाह बनाने ना कई बार सी कहते बहुत काढ़ काढ़ के चाह बनाने है ना, रखी पई है काढ़ी जाओ एक कप पानी रखता है तो बनानी अद्धी कप ही है तो फिर उन्होंने काढ़ी जाने चाह पत्ती कढ़ी जा रही है दुध पा के भी काढ़ी जा रहे हैं जे, मतलब 2 कप जड़ा है आप कुल मिला के पानी तो चाह पाए बनना वो अद्धा कप है। इन्नी ज़्यादा काढ़न के नाल जी चाह है ना वो फिर जी है ना एक तरह का एसिड बन जाता है, वह भी नहीं पीनी चाहिए। इस करके थोड़ी जी है ना घट जी दुध के पत्ती पा के तुम लगा सकते हो। होर अलग अलग तरह की चाह कि सारी चाह आ जिदा कि मैं दसी कश्मीर वाली नून वाली चाह वह भी है तो होर भी काफ़ी चाह। ठंडी चाह तो तुम्हें पीती है वो वाली ठंडी चाह नहीं है जी गर्म बना के बाद रखी जी चाह होंगी है वह भी एक तरह का एसिड है वह भी नहीं पीनी चाहिए। इस करके चाह बारे भी कई चीज़ें हैं जी जानिया जरूरी हैं। लो जी फिर अगला मैसेज सूँ एक होर आ चुका है वह भी पढ़ लें कि भेजे है तो की लिखते हैं। सानू अगला मैसेज आया है गुड मॉर्निंग नेम सुनील कुमार जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट सांबा तो सानू इन्होंने मैसेज भेज दिया तो लिखते हैं सवेर की शुरुआत 2 चीज़ों के नाल करनी चाहिए है। पहला कल दियां बुरियां घटनावां नू भुल जाना चाहिए है। दूजा एक नवा चीज़ सीखनी चाहिए है तो कुछ चंगा करना चाहिए। बिल्कुल हर एक दिन आपां जिहड़ी पुरानियां गल्लां है ना उन्हां नू भुल जाइए लेकिन उन्हां तों की लैसन सानू मिलदा वो याद रखना चाहिए फिर नवी शुरुआत तो आपां करदे ही हां। उस तो बाद सानू एक होर मैसेज आया है जिहदे विच लिखिया है मैसेज सानू भेजा है राम स्वरूप अरोड़ा चौंक छेलियां सुल्तानपुर लोधी तो सानू मैसेज आया है जिहदे विच लिखना चाहते ने जिहदा जिसका उदय होना निश्चित है उसके लिए प्रकृति भी रास्ता बना देती है। बिल्कुल जिन्हें अपनी दुनिया दे विच कुछ ना कुछ करना है ना फिर कहिंदे है ना कि जमीन या पहाड़ों विचों भी अपना रास्ता बना लेंदे ने यही है। तो अगला सानू मैसेज आ चुका है तो लिखते ने सत श्री अकाल अज चाह दिवस ते मेरिया कुछ सत्रा पर चाह थोड़ी थोड़ी घुट घुट ही पीनी है। तो ये मैसेज सानू भेजे है मनजीत सिंह बदन ने पिंड बदोवाल लुधियाणा तो चाह पी लईए तुरदे रुकदे थक रहे हाँ घुट चाह पी लईए कच्चे राहां ते पक रहे हाँ घुट चाह पी लईए चाह नेरी चाह नहीं है छुपी गल है कोई तपदी भी करे सैंता की कहिए घुट चाह पी लईए यह जवानी गुमानी अख मस्तानी भी है नशा हथ मुछ ते जी जी कहिए घुट चाह पी लईए टोटे टोटे होइयां भी चलना दिल धड़क रहा है लाके कुछ तोपे सी लईए घुट चाह पी लईए। लो जी बहुत वधिया सतरा ये तुसी पक्का आप लिखी है या फिर एआई दा कमाल है ये दस देना। लो जी अगला देखते हैं अगे कोई मैसेज ना रह जाना चाहिए। वैसे 9:31 हो चुके ने ते आज दे वैसे भी थोड़ा खास टॉपिक है बई चाह है आज ते चाह बारे चर्चा ते फिर बनती है साढ़े होर दोस्त जिन्हों का हुण तक मैसेज नहीं आया ते फिर उन्हां दी वेट कर रहे हैं कि चाह ते ही वेट कर रहे हैं। बिल्कुल

केंद्र सरकार ने नीट यूजी मुड़ प्रीख्या तो पहला अफवाहां ते फर्जी पेपर ली खबरां ते काबू पाउण लई मुख सोशल मीडिया मंचां नूं निर्देश जारी कीते ने। पछमी बंगाल सरकार ने भारत बंगलादेश सरहद उत्ते बाड़ लाउण लई BSF नूं जमीन सौंपण दा काम शुरू कीता है। अज देश भर विच दहशतगर्दी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल विच पाकिस्तान दे नसलकुशी दे इतिहास की निखेधी कीती है। पंजाब दे राजपाल अते चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया वल्लों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दियां अपील दी हमायत करदियां ऊर्जा संभाल अते चुगिरदा सुरक्षा बारे एक प्रेरणादायक पहल दी शुरुआत कीती है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो दे आर्थिक अपराध विंग लुधियाणा ने पंजाब राज बिजली कारपोरेशन लिमिटेड दे साबका मुख प्रबंधकी निर्देशक KD चौधरी अते साबका सीनियर एक्सीएन संजीव प्रभाकर नूं एक कलोनाइजर नाल मिली भुगत करके कथित तौर उत्ते सरकारी फंडा की दुरवरतों करन दे इल्जाम हेठ गिरफ्तार किया है। उत्तरी रेलवे का फिरोजपुर डिवीजन रेल मुसाफरां की सहूलत लई गर्मियां दीआं विशेष गड्डियां चला रहा है। पंजाब विच दो रोजा व्यापक पनीर सैंपलिंग मुहिम चलाई गई। सेहत मंत्री बलबीर सिंह ने कहा है नियमों की उलंघना करने वाले किसी भी खुराक कारोबारी ऑपरेटर खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर और फिरोजपुर विच तीन वख-वख कार्रवाइयां दौरान एक पिस्तौल 14 किलोग्राम हैरोइन और 12 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया। पंजाब अते हरियाणा विच जबरदस्त गर्मी लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग वल्लों खेतर लई ओरेंज अलर्ट जारी। IPL क्रिकेट विच कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल मुंबई इंडियनज़ नूं 4 विकटां नाल हरा के अपनियां प्लेऑफ दीआं उम्मीदां नूं बरकरार रख्या है। ए सन FM न्यूज़ हेडलाइंस।

FM News Headlines. FM News Headlines. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज अपने पांच देशों के सरकारी दौरे के आखिरी पड़ाव च इटली की सफल यात्रा तो बाद नवी दिल्ली वापस परत आए ने।

0: मरते थे बाकी हवा का चीर दे माया पलंग से तेरे वीर तो कोई हंतूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हाले करो ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ फुला देवे।
3: एफएम एंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी जलंधर दे रेनबो चैनल तो बोल रहे हां। हुण तुसी सुनोगे प्रोग्राम गीत बहार।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम गीत बहार दे विच। पहला तुसी गीत सुन के हटे हो, तेरा रंग बल्ले बल्ले देखा ना, किन्ना जी करदा नच्चण नूं, गीत किन्ना सोहणा है, आवाज़ां किन्नियां सोहणियां ने। जसविंदर नरूला ओए, पंजाब दी जिहड़ी धाकड़ आवाज़ है ते ना सोनू निगम, पंजाबी बीट्स ते बॉलीवुड ग्लैमर है। गीत दे विच वी जे तुसी देखिआ मैनूं पता बड़ी वारी देखिआ है, तुसी अक्सर देखते हुंदे आ कि फिल्म ही इन्नी सोहणी आ सोल्जर। तो हुण जिहड़ा अगला गीत सुनोगे तुसी, उस विच आवाज़ां दित्तियां ने कविता कृष्णामूर्ति ते विनोद राठौड़ ने। फिल्म दा नाम है हम दिल दे चुके सनम। ओए होए होए, क्या फिल्म सी, क्या फिल्म सी। फिल्म दे विच अदाकार अपने भाई जान सलमान खान ते नाल ऐश्वर्या राय। ते फिल्म दे विच्चों एक बहुत ही सोहना बीट सोंग है, क्योंकि अज असी गल जिहड़ी कर रहे हैं, गीत ला रहे हैं, सुना रहे हैं, तो तुहानू नच्चण नू मजबूर कर रहे हैं, वह है हिंदी फिल्मी बीट सोंग्स। ते हुण जिहड़ा कुमार सानू ते कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज़ दे विच, विनोद राठौड़ की भी आवाज़ है, उन्हां दी आवाज़ दे विच डोली तारो डोल बाजे। ते फिल्म का नाम हम दिल दे चुके सनम।

एफएम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के सरकारी दौरे के आखिरी पड़ाव च इटली की सफल यात्रा के बाद नवी दिल्ली वापस परत आए ने। केंद्र सरकार ने नीट यूजी प्रीख्या मुड़ प्रीख्या तो पहला अफवाहां ते फर्जी पेपर लीक खबरां उत्ते काबू पाउण लई मुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मां नूं निर्देश जारी कीते। पछमी बंगाल सरकार ने भारत बंगलादेश सरहद उत्ते वाड़ लाउण लई BSF नूं जमीन सौंपण दा काम शुरू कीता। अज देश भर विच दहशतगर्दी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल विच पाकिस्तान दे नसलकुशी दे इतिहास दी निखेधी कीती है। पंजाब दे राजपाल अते चंडीगढ़ दे प्रशासन

0: थोड़ी देर बाकी हवा में चीर दे होया पलंच तेरे बिना तो कौन दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे बिर तो हले करो ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुनते ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ भुला देवे।
3: एफएम एंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। हुण तुसी प्रोग्राम सुनोगे पंजाबी तड़का।

कानूनी सेवाएं अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 के तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तो प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो चुका है होम स्वीट होम। आरजे रंजीत लैके आया है अज कोई अजिहां गल्लां बातां, अजिहा खाण पीन दा, अजिहां रामबाण दवाइयां ते फलां नूं किवें खाणा है, बीमारी विच वरत खतरनाक हुंदा है ते

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
2: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000
1: ते बिजली दे बिल दे
2: हुन 0 रुपए की वेदावा।
1: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उस दी शॉपिंग करन चलिए।
2: जरूर पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: सुधाकर साहबा, मिर्जे दी बाकी हवावा नु चीर दे होया पलंच तेरे वीरा तो कोई दूर निकल जाएगी।
1: जस चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ फुला देवे।

0: कर साहबा, मिर्जे के बाकी हवा नु चीर दे होया पलंच तेरे बिना तो कोई हम दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे बिर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ भुला देवे।
3: एफएम एंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। हुण तुसी सुणोगे प्रोग्राम मिडडे मेलोडीज़।

प्यार का मौसम मूवी तो गीत सुन के हटे हो, मैं ना मिलूंगी, नजर हटा लो लता मंगेशकर दी आवाज दे विच। मेलोडियस गीतां दे इस प्रोग्राम दे विच हुण तुसी इंजॉय करोगे फिल्म है जब जब फूल खिले तो, ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, जिसनूं आवाजां दित्तियां ने सुमन कल्याणपुरी ते मुहम्मद रफी ने। गीत नूं कंपोज किया है कल्याण जी आनंद जी ने ते राइट किया है लिखा आया है आनंद बख्शी ने। इस गीत तो मैनूं ये भी याद आया है कि जदों असीं अंताक्षरी खेडदे हुंदे आ ते उदों अक्सर ये गीत तकरीबन शुरुआती दौर विच ही गुणगुनाउण लग पैंदे आ, खासकर जदों एन अक्षर ते एन अक्षर दे उत्ते नन्हे अक्षर दे उत्ते जदों कोई गीत आउणा ते असीं इही गीत सुणदे आ। हुण भी मेलोडियस गीतां दे इस प्रोग्राम विच सुणो ये सुणियां आवाज़ां दे विच ये सुणा जिहा गीत।

0: यार सच दसा हुणे तां गर्मियां शुरू होईयां ने ते 7,000 रुपए बिजली दा बिल भी आउण लग पिया है। वाइफ कदों तो बोल रही है सोलर पैनल लगाउण लई, ओह आखदी है कि सरकार सबसिडी भी दे रही है। मैं जिन्हां नूं भी पुछिया उन्हां सब दा बिजली दा बिल जीरो आ रहा, इस बार मैं लगा ही देना। जदों बिजली मुफ्त मिलदी है तां लै के नहीं रहे वीर, तुसीं भी लगा ही दिओ।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाके।
1: फिर हाजिर होवांगे फौजी वीरां लई कुछ होर गीतां दे नाल।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों के

102.7 FM रेनबो मैं तुहाड़े नाल आरजे बरुण कौर मान बीके मान प्रोग्राम दिलाज शायर है दिलाज शायर है प्रोग्राम दे विच स्टार्टिंग दे विच मैं तुहानू दसना फोन नंबर जिस फोन नंबर दे उत्ते तुसी व्हाट्सएप ते मैसेज करना है सानू ओ मैसेज दे विच तुसी कोई शायरी कविता गजल जिहड़ी है भेज सकते हो तुहाडा नाम तुसी केड़ी जगह तो वह सानू भेज रहे हो लिख दे हो तुसी असी उसनू प्रोग्राम दे विच शामिल कर लेना नंबर मैं तुहानू नोट करवाउण लगी हैं और जिहड़ा नंबर मैं तुहानू दस रही हाँ ना मैं तुहानू एक बार फिर यह गल दस रही हाँ फोन नहीं करना मैसेज करना ते जे नवे सुनन वाले सानू सुन रहे ने वह भी नंबर नोट कर लैन वह भी कोई शायरी कविता गज़ल जरूरी नहीं है कि तुसी अपनी लिखी होवे किसी अच्छे राइटर दी वधिया राइटर दी लिखी हुई भी तुहाडे कोल कोई है तो उसनू मैं शामिल करांगी प्रोग्राम दे विच नंबर नोट कर लो साडा नंबर है जी 9855 10 10 27 9855 10 10 27 एक बार फिर तो नंबर मैं तुहानू दस दिनी है कि 9855 10 10 27 9855 10 10 27

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे

0: मेरा एक जिद्दी गुआंढी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मन्नू तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकता है। मैं क्या पुत्र, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब का बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: ये है FM रेनबो, इसी का नाम जिंदगी।

102.7 FM रेनबो प्रोग्राम दिल आज शायर है। ये प्रोग्राम है शायरी कविता गजल। इस दे विच लेख कहानियां जा होर चीज़ां शामिल नहीं कीतियां जाणगियां। साढ़े सुनने वालों नूं एक बेनती है प्यार दे नाल कि जो कुछ भेज रहे ने ते बस फिर इन्हां तिना चीज़ों चो ही एक चीज़ भेजन। 102.7 FM रेनबो ते मैं तुहाडे नाल वरुण कौर मान। दिलाज शायर है, रिश्तों की बात कर रहा है, सहनशीलता और विश्वास से हर घर महक रहा है। किरण की तरफ से अनिल कुमार जी को सालगिरह मुबारक। प्यार वही खूबसूरत है जो हर हाल में साथ निभा रहा है। आज मैडम मान जी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज मैरिज एनिवर्सरी है किरण अरोला ग्रीन पार्क कपूरथला। धन्यवाद सहित क्या बात है, मुबारक जी थानू। तो शायरी भी मैनू लगता आप ही लिखी है।

102.7 FM रेनबो प्रोग्राम दलाज शायर है। सबकी एक समाविधि होती है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। एक दिन दुख खत्म हो जाएंगे, सुख भी, हमारे आंसू भी, अकेलापन भी, लोग भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। रास्ते, उम्मीदें, सपने, प्रेम, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें निराश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए, हमें सब कुछ जी लेना चाहिए, हमारे सारे उत्सव मना लेने चाहिए। ये लिख के भेजा जी राम स्वरूप अरोड़ा चौक सुल्तानपुर लोधी तो। अगली शायरी कोल पहुंची है सुभाष चंद्र वत्स, गिदड़वाहा तो लिख के भेजते ने। बचपन से पाला पोसा था, आजकल लगाकर ठेस गया, माँ की आंखों में आंसू थे, बेटा जब परदेस गया। क्या ही बात है। अगला मैसेज मेरे को पहुंचे है जी, नाम सुखदीप सिंह तिमान, पिंड बडाली नेड़े कुराली शहर जिला रोपड़ तो। कहते ने तुसी मेरी शायरी पढ़ना, मैं नवा स्रोता हाँ तुहाडे इस प्रोग्राम का। वेलकम के तुसी साडे नवे सुनन वाले इस प्रोग्राम दे नाल बने हो। ये लिख के भेजते ने, तू उस रब का शुकराना करन, ओके वाह ब्यूटीफुल। वो कहें कि तू उस रब का शुकराना करन जाया कर, तेनों क्या देना, किवे देना, किन्ना देना ते कदों देना, वो खुद जानता है। अच्छा, इतों ही पता लग गया तुसी रोपड़ तो हो। जे पंजाब दे होर किसी थान तो मैसेज आया हुंदा ना, फिर कहना सी तेनू की देना, तुसी रोपड़ वाले क्या कहने हो, पता है मैनू। पुआधी भाषा जिहड़ी है तुहाडी उस झलक जाती है विच। अगला मेरे कोल मैसेज पहुंचया है, अज अंतरराष्ट्रीय चाह दिवस दियां एफ एम रेनबो की सारी टीम के स्रोतियां नू बहुत बहुत वधाइयां। ये तो गल सही है कि अज है ना चाह दिवस है। मैं भी इंटरनेट के उत्ते पढ़ रही सी, इसनू लिखण वाले लेखक ने, लेखक मूल चंद शर्मा जी, पंजाबी दे राइटर है और वह सचमुच बहुत सोहना लिखते ने। तो उन्हां दी लिखी हुई इस रचना नू फॉरवर्ड किया है सानू मेन बाज़ार हठूर तहसील तो इकबाल जी ने। तो ये लिख के भेजते ने कि अज सुनिया चाह दिवस है, आ जा बह के पी लै चाह, लोग वेंदे ने की सोचणगे।

102.7 FM रेनबो प्रोग्राम द लार्ज शायर है वदारचे बीके मान। सोनू उमान तो लिख के भेजते ने, तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह मुझे कौन चाहेगा। ना जाने क्या जादू है उसकी बातों में, दिल भी उसका हो जाता है और वक्त भी। ये लिख के भेजा है इकबाल सिंह चौहान हुणा ने अमृतसर। नाल दे नाल इन्होंने एक गल ना होर लिख के भेज दी। पहला मैं सोच रही सी सांझी करा कि ना करा, फिर मैं कहा चलो अगलिया ने हाथ नाल लिख के भेजा है भाई, तो चिट्ठी बना के भेजी है, चिट्ठियां पढ़ लेनिया चाहीदियां ने। कहिंदे ने कि मैडम जी तुसी बहुत समय बाद एफ एम रेनबो जलंधर दे स्टूडियो च अपनी हाजिरी लवाई है, तो सब तो मैं हैरान रह गई है कि इन्हां दी जादाश्त देखो किन्ने कमाल दी है। कहिंदे ने कि इस तो पहला आकाशवाणी दे सफर दे 90 साल पूरे होण कारण जो आकाशवाणी वालों वाकाथॉन करवाई सी उस विच तुसी हिस्सा लैके स्टूडियो च कुछ समय ले हाजिरी लवाई सी। और चलो अगे इन्होंने कहा कि प्रोग्राम पेश करन दा तरीका जल्दी आया करो, उन्हां सारियां चीज़ां दे लई बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं क्या कि आओ चार चंद लाओ, थोड़ी आवाज़ सुनने के लिए इंतजार करना पैंदा है। पर सब तो वधिया गल इन्हां गल्लां तां चलो कोई बोली नहीं है ना, इन्नियां प्यारियां ने, पर तुसीं देखो कि साढ़े सुनने वालियां नूं इह याद है कि वॉकथन कराई सी ते उस प्रोग्राम के दौरान जिहड़े जिहड़े आर जे बोले सी, किन्नी देर बोले सी, इह सारा कुछ साढ़े सुनने वालियां नूं चेते है। इह शायद कारण है कि आकाशवाणी हुण 90 साल का हो रहा है, तो अगे भी किन्ने साल आकाशवाणी ने चलना है। ये सारा कुछ इन्हां गल्लां करके ही है क्योंकि जदों साढ़े सुनन वाले साढ़े नाल जुड़ते ने, चेता रखते ने गल्लां नूं, तो साढ़े तक अपनी पहुँच बरकरार रखते ने, असी अपनी पहुँच उन्हां तक पहुँचाउण दी पूरी कोशिश करी दी है। सो थैंक यू सो मच कि तुसीं साडे प्रोग्राम नूं इन्ने ध्यान दे नाल सुनदे हो कि तुहानूं चेते रहिंदा है कि कीड़ा आर जे किन्नी देर तक की ते कदों बोलिया सी। कहिंदे ने कि हसना उन्हां दी आदत सी, असीं गलत अंदाज़ा ला बैठे। हसना उन्हां दी आदत सी, असीं गलत अंदाज़ा ला बैठे। वो हसते हसते चले गए, असीं अपना आप गवा बैठे।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के साथ आ गई है आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। क्या होता है फिटनेस, ये सब जानना चाहते हैं ना आप? और हम समय समय पर आपको जानकारी यहाँ से देते ही रहते हैं। प्रतिदिन आप जुड़ते हैं हमारे साथ आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर 102.6 पर, और साथ ही साथ प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR

0: पर भी आप सुनते हैं, क्या सुनते हैं, प्रतिदिन रेडियो डॉक्टर सुनते हैं ना, और बिल्कुल हमारे साथ कैसे जुड़ते हैं ये तो आप जानते हैं, लेकिन हमारे वो नए श्रोता जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं और ये कारवां बढ़ता जा रहा है, उनके लिए मैं बता दूं जो नए नए श्रोता यहाँ आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। और आपको बता दें कि आज का जो अंक है बहुत ख़ास इसलिए है कि हम फिटनेस की बात करेंगे, लेकिन कैसे जुड़ेंगे, आप अपने प्रश्न कैसे पूछेंगे वो भी आपको थोड़ी देर से बताएंगे। लेकिन आज का जो पहला अंक है ये किस बात पर केंद्रित है इसको हम अच्छी तरह से आपको समझा देना चाहते हैं। क्या है फिटनेस आपके हिसाब से? क्या शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं या पतले दुबले हैं तो आप फिट कहेंगे अपने आप को, या मेंटली अगर आप फिट हैं तो फिट कहेंगे अपने आप को? क्या डेफिनेशन होती है एक फिट आदमी की? ये सारी बातें आज हमें लगता है इस कार्यक्रम के बाद आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। और ये समझाने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो रेडियो डॉक्टर्स को, दो ऐसे विशेषज्ञ जो अपने अपने क्षेत्र के जानकार हैं और जो आप तक पहुंचाएंगे फिटनेस का सही मायने क्या होता है। तो आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहेंगे हमारे दो गेस्ट से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मधु खुराना, आप योग स्पेशलिस्ट हैं, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में आप काम करती हैं, आप पिछले 13 साल से योग थेरेपी और योग टीचिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार।
1: धन्यवाद मैम।
0: और हमारी दूसरी आज गेस्ट हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी, आप पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कोच हैं, आपको ऑनर किया जा चुका है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। नमस्कार और स्वागत।
2: शुक्रिया मैम, थैंक यू।
0: तो अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का हमारा विषय है फिटनेस मंत्रा, और खास आज यानी 21 मई को मैंने इस विषय को क्यों चुना है ये भी आपको बता दें कि ठीक एक महीने बाद यानी 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योग, जो एक बहुत बड़ा दिवस है जिसको अब इस बार हम 12वीं बार मनाएंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ योग का महत्व क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक दिन की, एक महीने की बात नहीं है, फिटनेस हमारे ज़िंदगी का जीने का तरीका है। और सबसे पहले मैं चाहूँगी डॉक्टर मधु खुराना आप बताइए, व्हाट इज़ फिटनेस अकॉर्डिंग टू यू?
1: जैसे कि मैम अभी आपने कहा कि क्या फिटनेस सिर्फ शरीर की आकृति से सीमित है कि आप दुबले पतले हैं तो क्या फिट हैं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस देखे होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं, वो दिखने में तो दुबले पतले दिखते हैं बट मानसिक रूप से तनाव से ग्रसित हैं
0: जी,
1: और बहुत ज़्यादा आजकल हार्ट अटैक और इस प्रकार की जो है आप देखेंगे लोगों में लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डायबिटीज़, हाई बीपी, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, चाहे लोग दुबले पतले क्यों ना हो, पीएमओ जैसे पीसीओडी जिसे अब पीएमओएस बोला जा रहा है, इस तरह की समस्याएं महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं, चाहे वो दुबली पतली ही क्यों ना हो। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति विधि है ते, यानी जब भी कि आपके सम दोष यानी दोषास वात पित्त कफ बैलेंस्ड हो, सम अग्नि आपके अंदर अग्नि जो है डाइजेस्टिव फायर है वो बैलेंस्ड हो, सम धातु सप्त धातु से हमारा शरीर बना है वो बैलेंस्ड हो, मल क्रिया प्रॉपर एक्सक्रीशन हो, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रसन्न है हम आत्मा से, इंद्रियों से, सेंसेस हमारी कंट्रोल्ड है मन से, तभी हम कह सकते हैं स्वस्थ कि हम फिट हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे ही अगर हम देखें जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO ने भी कहा है कि अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है सिर्फ तो आप फिट नहीं हैं, अगर आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो हैं स्वस्थ हैं तभी हम कह सकते हैं कि आप फिट हैं। इसमें एक फोर्थ कंपोनेंट आध्यात्मिक भी ऐड किया गया
0: जी,
1: है
0: बिल्कुल
1: जी। तो अगर आप इन सब से अगर आप समझ पाते हैं कि आप फिजिकली भी अपने आप को फिट समझते हैं कि आपके अंदर कोई रोग नहीं है, ठीक है, और ऐसा फील कर रहे हैं आप, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके रिपोर्ट्स में ऐसा दिख रहा है, आप ऐसा अनुभव भी करते हैं, मानसिक रूप से भी आप खुश हैं, तनाव नहीं है आपको, कोई भी समस्या हो लाइफ में आप उसे जो है हैंडल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं,
0: ये भी इम्पोर्टेंट है,
1: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तनाव तो देखिए सिचुएशंस तो ऐसी रहेंगी हमारे आसपास, बट क्या आप उसमें समत्वम जिसे हम बोलते हैं योग में उसे अटेन कर पा रहे हैं कि सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, आप बैलेंस्ड हैं, इसे भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है, क्या आप उस स्थिति के आसपास भी हैं, ठीक है, और आप सामाजिक रूप से सबसे जुड़ पा रहे हैं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि योग जो है वो एक एक्सरसाइज नहीं है, योग जो है वो खुद से जुड़ना, उसके बाद आप विश्व से जुड़ रहे हैं और प्रकृति से जुड़ना है, तो क्या आप इस प्रकार इस हर लेवल पर जुड़ पा रहे हैं तो ही हम कह सकते हैं कि हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं
0: जी। बहुत बहुत ज़रूरी बातें आपने यहाँ पर बताई हैं कि योग को भी आपने बताया है, हम फिटनेस को एज अ होल लेके चल रहे हैं, बहुत तरीके होते हैं लोगों के

0: अपने फिट रखने के लिए कई लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योग करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सारी बातें चाहेंगे हमारे श्रोताओं तक पहुँचें। और डॉक्टर रीता हमारे साथ हैं। रीता जी, ये बताइए, एक डेफिनेशन मधु जी ने बताई, आपके हिसाब से व्हाट इज़ फिटनेस?
1: मैं मधु जी के साथ बहुत सहमत हूँ कि लोग यही समझते हैं कि जिम जाना, डाइट करना, वेट लॉस, यही आप फिटनेस को मानते हैं। इन्हीं के जो इन्होंने डिस्क्राइब की अलग अलग धारणाएं, उनमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि धरती 5 तत्वों से बनी है, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। और आप देखेंगे भगवान ने पांचों के पांचों जो भी तत्व हैं वो बराबर रखे हैं। एक ज्यादा होता तो हम रहने लायक यहाँ नहीं होते धरती पे। वैसे ही एक इंसान की एज अ पर्सनैलिटी कोच जो मैं देखती हूँ, वो ये देखती हूँ कि फिटनेस के भी 5 तत्व हैं, फिजिकल यानी कि अच्छा दिखना, इमोशनल अच्छी सोच रखना, स्पिरिचुअल खुद पे विश्वास होना, कल्चरल ऊंच नीच का भेदभाव न करना, और साथ में सोशल लोगों के बीच में उठने बैठने की तमीज़। मैं कुछ इस हिसाब से

0: पर्सनालिटी कोच जो मैं देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि फिटनेस के भी 5 तत्व हैं, फिजिकल यानी कि अच्छा दिखना, इमोशनल अच्छी सोच रखना, स्पिरिचुअल खुद पे विश्वास होना, कल्चरल ऊंच नीच का भेदभाव न करना, और साथ में सोशल लोगों के बीच में उठने बैठने की तमीज़। मैं कुछ इस हिसाब से देखती हूँ कि ये 5ों भी बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये चीज़ें भी देखी जाती हैं जो फिटनेस में ही आती हैं। तो फिटनेस मेरे हिसाब से इन 5ों तत्वों का, फिजिकल तत्वों का बैलेंस है जो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि तत्व कौन सा कम है मुझ में।
1: जी, जी।
0: ये पता कर लेंगे जिस दिन और बैलेंस कर लेंगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे।
1: जी, तो अगर ऐसा कोई तरीका है कि इसको कैसे जज करना है तो वो भी हम आज डॉक्टर रीता से ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हर तरह से हम उनको स्वस्थ रहने की दिशा में प्रोत्साहन दे सकें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या आपका कोई फिटनेस मंत्र है या आपकी कोई डेफिनेशन है फिटनेस की वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लिखिए हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, और अगर आप फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे बात करके कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारी 2 फ़ोन लाइन्स हैं जिस पर आप डायल कर सकते हैं, तो नोट कर लीजिए हमारे नंबर 2342-1080, 2342-1082, और अगर आप दिल्ली के बाहर से आप डायल करेंगे या नंबर मिलाएंगे तो 011 दिल्ली का कोड ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर एक म्यूज़िकल ब्रेक लेंगे और एक प्यारा सा गीत सुनकर वापस आएंगे, लेकिन आप हमारे साथ रहिए क्योंकि बहुत सी बातें फिटनेस से रिलेटेड आज आपको जानने को मिलेंगी। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ मेरे दो एस्टीम्ड गेस्ट हैं डॉक्टर मधु खुराना और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी. बहुत सारे मैसेजेस भी आप लोगों के आ चुके हैं और फ़ोन कॉल्स पर भी हमारे गेस्ट हमारे लिसनर्स मौजूद हैं. तो पहले फ़ोन कॉल ले लें मैम.
1: जी
0: चलिए. हेलो.
2: हेलो
0: जी नमस्कार, स्वागत कार्यक्रम में आपका.
2: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ.
0: जी पूछिए अब सवाल.
2: हाँ पहले तो शालिनी मैम को शालिन भाई नमस्कार.
0: जी नमस्कार.
2: और बॉस मैम को भी नमस्कार. मेरे ना तीन चार छोटे छोटे सवाल हैं प्लीज. पहला सवाल मेरा ये है कि चूंकि ये मशीनी युग है तो जाहिर सी बात है महीनों काम सेकंडों मिनटों में करके देने हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएं कि क्वालिटी और स्पीड और कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम काम कर सकें. कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज, पहला सवाल ये. दूसरा सवाल मेरा ये है कि दिमागी तौर पर फिटम फिट गुडम गुड रहने के लिए कई लोग अखरोट खाते हैं और बादाम खाते हैं, कई लोग पिस्ता खाते हैं और केसर खाते हैं, तो इसमें से बेस्ट डाइट कौन सी होगी. तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने ये नोट किया कि कई ऐसे शख्स होते हैं मैम कि वो होते पतले दुबले हैं पर फिर भी 25-25 किलो वेट उठा लेते हैं, और कई लोग होते हैं हट्टे कट्टे मुड़े तगड़े फिर भी उनसे 5 किलो वेट भी नहीं उठता. जैसे एक आर्टिकल एक जो है वो लेख ही बना हुआ है एक टोकरी मिट्टी की, तो इस तरफ हमें क्या करना चाहिए. और चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि मैम क्या कहती है वॉइस जो हमारी आवाज होती है तो इसको मतलब मेलोडी में मधुर करने के लिए क्या कोई डाइट को एक्सरसाइज भी होती है क्या, जरा ये बताएं चार सवाल. बड़ी
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी. वैसे बहुत सारे सवाल आपके ओवरलैपिंग ही हैं, तो बेसिकली हम डाइट और एक्सरसाइज पर ये तो हम बात कर ही रहे हैं कि किसी की फिजिकल आउटवर्ड उससे देखकर तो नहीं पता लग सकता, लेकिन हाँ एक बैलेंस तो होना चाहिए, हाइट और वेट का एक बैलेंस जो होता है. लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोग दिखते बहुत हेल्दी हैं या मजबूत हैं पर वो कर नहीं पाते उस हिसाब से काम, तो आपने प्रश्न सुन लिया, आप बताएं क्या आप कहना चाहेंगे आप.
1: जी बिल्कुल, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में लगता है कि हड्डे कट्टे हैं बट उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता
0: जी,
1: है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस.
0: अच्छा.
1: कि आपकी बॉडी में कितना फैट है, कितना मसल मास है, कितना फैट फ्री मास है, कितना वाटर कंटेंट है, और ओवरऑल आप कितना ज़्यादा आपकी मसल स्ट्रांग है, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है. फिटनेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं कि कितना एंड्योरेंस है आपकी बॉडी में, कितना स्ट्रेंथ है आपकी मसल्स में और कितनी फ्लेक्सिबल है, तो इन सब लेवल पर हम फिटनेस को मेजर कर सकते हैं. तो हो सकता है कोई दिखने में ऐसा लग रहा हो बट दैट कैन बी अ इल्यूजन. जब तक कि आप डेली अभ्यास ना करें, एक रेगुलैरिटी ना रखें अपनी रूटीन में दिनचर्या में, तब तक हम नहीं कह सकते. किसी को सिर्फ आउटर अपेयरेंस से हम जज नहीं कर सकते हैं. कई लोग बहुत दुबले पतले दिखते हैं बट वो जैसे कि उन्होंने बोला बहुत हैवी वेट भी उठा लेते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म कैन बी गुड हाई एंड दिस इज पॉसिबल कि उनकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ हो और मोर एंड्योरेंस हो. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी रूटीन आपके लाइफस्टाइल के ऊपर ये निर्भर करता है, सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं.
0: तो क्या होनी चाहिए रूटीन और लाइफस्टाइल जिससे कि हम इतने स्ट्रांग बन जाए.
1: जी मैं तो योग एक्सपर्ट हूँ, योग ही सबसे पहले मेरे मन में आता है कि आप अगर रेगुलर जो है योग प्रैक्टिस करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक घंटा करें, अगर आपके पास आधा घंटा है आप आधा घंटा करें, 45 मिनट्स है 45 मिनट्स करें, और अगर वो भी नहीं है तो 5 मिनट्स का वाई ब्रेक जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है बनाया है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है. 5 मिनट का अभ्यास भी अगर आप करें तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, यू कैन रीफ्रेश रीफोकस योरसेल्फ. तो अगर उतना भी नहीं तो आप अपने सिर्फ श्वास पे ध्यान दीजिए और रिलैक्स कीजिए तो भी आप अपने आप से जुड़ रहे हैं और आप बेटर फील कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन नॉट

0: जस्ट ऑन द बॉडी बट ऑल्सो ऑन द ब्रेथ, ऑल्सो ऑन द माइंड. तो उन सभी लेवल्स पे वर्क करना ज़रूरी है.
1: तो माइंड के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन या कुछ?
0: जी मैम, हमारा ना जो पंचकोश का थ्योरी आता है जो उपनिषद से लिया गया, तित्री उपनिषद से, जिसमें माना गया है कि हमारा जो शरीर है वो सिर्फ फिजिकल आउटर बॉडी नहीं है. मॉडर्न साइंस तो ये समझती है कि हम सिर्फ ये आउटर बॉडी फिजिकल बॉडी हैं. योग कहता है कि हमारे पांच कोशाज हैं, दे आर फाइव लेयर्स ऑफ आवर एक्सिस्टेंस, जिसमें जो आउटर है वो अन्नमय है, विच इज मेड अप ऑफ फूड, कि हम कैसा आहार खाते हैं उस पर डिपेंड करता है. देन उसके बाद आ गया प्राणमय कोश, विच इज़ अ प्राणिक शीत इनसाइड अस, कि हमारे अंदर जो प्राणों का प्रवाह है वो किस प्रकार हो रहा है, कितना बैलेंस्ड है हमारी नाड़ीज में. देन आफ्टर दैट देर इज अ मनोमय कोश, विच इज़ अ मेंटल लेयर, मेंटल शीत. उसके बाद एक विजडम लेयर आती है, विज्ञानमय, एंड द इनर मोस्ट इज द आनंदमय, विच इज़ वेरी मच क्लोज टू आवर ट्रू नेचर, सच्चित आनंद, ब्लिसफुल शीत हमारी आती है. तो ऐसा माना जाता है, योग वशिष्ठ में ऐसा कहा गया है कि जो डिजीज़ की शुरुआत होती है वो मनोमय कोश से होती है, मन से होती है. और जब हमारे हम मन से तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं या दुविधा में होते हैं किसी भी, तो लॉन्ग टाइम तक जब ऐसा रहे तो वो हमारे प्राणिक लेयर को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, यानी आपकी ब्रीदिंग का तरीका बदल सकता है. आप गलत तरीके से श्वास ले रहे हो, ऐसा संभव है, और फिर अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ डिजीज़. तो आज जो हम किसी को कोई समस्या देख रहे हैं उसकी शुरुआत कई साल पहले से हो सकती है. ऐसा हो सकता है उस व्यक्ति को बहुत समय से तनाव रहा हो और उसने ध्यान ना दिया हो, उसकी प्राणिक शीत भी इम्पैक्ट हो गई हो, उसकी ब्रीदिंग हैफिजिड हो, पैल्पिटेशंस हो. आपने सुना होगा लोगों को कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है ठीक से, और अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ डिजीज़. तो अगर हम इन सभी लेयर्स पर काम करें, नॉट जस्ट ऑन द आउटर बॉडी, हम प्राणिक जो है शीत उसके लिए प्राणायाम की प्रैक्टिस है, मनोमय के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो ध्यान के अभ्यास हैं उस पे प्राणायाम एंड ध्यान बोध, इस तरह की प्रैक्टिस, विजडम शीत जो हमारी जो है उसके लिए काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट, योगिक काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी हम जो है अपने क्लोजेस्ट जो हमारा ट्रू नेचर है आनंद में उससे जुड़ सकते हैं, और हर परिस्थिति में हम जो है आनंद की स्थिति में रह सकते हैं, जो कि हमें स्वस्थ भी रख सकता है. और साथ ही साथ जो योग के विभिन्न कंपोनेंट हैं, जिसमें कि हमारा आसन आ गया जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करता है, आसन इन भवे दृढ़म ऐसा कहा गया है हठ योग में, कि आसन करने से शरीर में दृढ़ता आती है. घृण संहिता के टेक्स्ट में इसका वर्णन मिलता है. और आसन इन रुजोहंती, यानी डिजीज को दूर करता है, और कुर्यात तदासनम स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम, यानी आसन करने से स्थिरता, आरोग्यता, डिजीज लेसनेस और लघुता, शरीर में लाइटनेस आती है इस प्रकार. और ततो द्वंद्वान भी घाता है, ऐसा हमारे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि आसन करने से आपके फिजिकल, मेंटल सब तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो दूर होते हैं. तो इस तरह से हम अगर अष्टांग योग की प्रैक्टिस, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अल्टीमेटली विच इज समाधि, तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इस रूटीन को, हम डेफिनेटली इन सभी कॉम्पोनेंट्स का ध्यान रख सकते हैं.
1: जी, तो सुनिए श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कि ये फिटनेस इतना एक छोटा सा या ऊपर दिखने वाला एक वर्ड नहीं है, ये कितना डेप्थ रखता है. बहुत सारी बातें डॉक्टर मधु ने बताई, बहुत सारे हमारे श्रोता फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं. हेलो.
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बता दें. जी, कहां से बोल रहे हैं?
2: यूपी मेरठ से बात कर रहे हैं.
1: जी, क्या पूछना चाहते हैं?
2: मैडम जी, मेरा मसाले में गर्मी है, इसके लिए प्रॉब्लम होती है मसाले में.
1: जी, आपकी बात स्पष्ट नहीं है पहुंच रही हम तक, फिर से बताएं.
2: मेरे मसाले में प्रॉब्लम होती है,
1: पेट में कुछ समस्या है.
2: हाँ, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ ना, तो मेरे को गैस की जब खाना बनता है, तो इसके लिए बताइए क्या कोई उपाय है, दवाई है?
1: चलिए, आपने सुन लिया, हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं आपको. जी,
0: अगर आप खाने में अत्यधिक मसाले का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं, जैसे गैस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है. तो पहले तो आपको मिताहार लेने की आवश्यकता है. तो आप किस तरह की डाइट लें? सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांश विवर्जिते भुजते शिव संप्रीते मिताहार से उच्चते, यानी पहले तो भूख से कम, एक चौथाई भूख से कम आपको खाना खाना है, और सरल सिंपल फूड आपको खाना है. सात्विक आहार की बात कही गई है भगवद गीता में भी, कि अगर आप बहुत ज़्यादा तामसिक या फिर राजसिक भोजन, जैसे मिर्च मसाले युक्त भोजन करते हैं, तो ये डेफिनेटली शरीर में रोग और इस तरह की बीमारियां, एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता
1: और
0: है.
1: समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जी, कहते हैं कि बिल्कुल खाए और आप सो गए या मूवमेंट नहीं किया.
0: जी बिल्कुल,
1: वो भी इम्पोर्टेंट.
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना खाते ही ना लेते. अगर आप डिनर कर रहे हैं, एक तो अर्ली डिनर की बात कही गई है कि समय पर भोजन ले लें, और उसके बाद 2-3 घंटे का कम से कम गैप रखें. कि खाना खाते ही लेटेंगे तो वो डेफिनेटली एसिड ऊपर की तरफ आएगा और इस तरह की समस्याएं, जैसे चेस्ट में आपको बर्निंग सेंसेशन, इस तरह की फील हो सकती हैं. और साथ ही साथ योगाभ्यास करें कि आपके कोर मसल स्ट्रांग हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटर काम करें. आप आयुर्वेद की दिनचर्या भी फॉलो कर सकते हैं, आपके किस

0: समय खाना है, कितना खाना है, ठीक
1: जी
0: है, वो अपनी प्रकृति अनुसार खाना है आपको, कि
1: जी
0: क्या
1: जी
0: भोजन मौसम के अनुसार
1: बिल्कुल
0: ऋतुचर्या
1: बिल्कुल।
0: फॉलो
1: और
0: करें।
1: हम यहाँ पर समय
0: जी
1: समय पर आयुर्वेद पर भी आधारित कार्यक्रम करते हैं, तो आप उनको भी आप सुनते रहिए। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर रीता गंगवानी हैं, जो कि एक पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कोच भी हैं।
0: जी
1: तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी रीता जी, कि जैसे एक फिटनेस की जब हम बात करते हैं, और जब किसी पेजेंट में देखते हैं, हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटी एंड एक उसमें होते हैं,
0: जी
1: तो उनकी फिटनेस और इनकी फिटनेस, नॉर्मल फिटनेस में क्या फ़र्क आप देखती हैं, क्योंकि आप उनको कोच करती हैं।
0: जी उनकी जो आप देखेंगे लाइफस्टाइल बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है।
1: जी
0: सारा दिन कैमरास के आगे, मेकअप रूम्स में, इधर से उधर भागना इवेंट्स में, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने फिटनेस की तरफ ध्यान रखने का। तो ऐसे में उनको सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मधु जी ने कहा, डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चलते फिरते कुछ भी खा लेना, फास्ट फूड खा लेना, तो वो उनको इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे में मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सुबह काफ़ी जल्दी उठते हैं, इससे पहले कि वो अपनी दिनचर्या शुरू करें, वो अमृत वेले में उठते हैं, क्योंकि उनको फिजिकल तकलीफ़ों से कहीं ज़्यादा मेंटल तकलीफ़ों की तरफ ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है, तो इसीलिए पहले तो खुद को डी-स्ट्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है उनके लिए। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो वो सुबह अमृत वेले में करते हैं, और इसके साथ साथ जो मैं देखती हूँ और जो मैं सिखाती भी हूँ, वो है ग्रैटिट्यूड। ज़िंदगी में अगर आप शुक्रगुजार हैं किसी चीज़ के लिए, और हम लोग ज़्यादातर कंप्लेंट्स में लगे रहते हैं और कंपैरिजन में लगे रहते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है वहाँ पे बस यही है कि आज आप हैं और कल नया चेहरा आया तो
1: जी
0: आपको कोई नहीं याद रखता, तो कम ये चीज़ होगी, होती रहती है,
1: इनसिक्योरिटी में,
0: इनसिक्योरिटी में
1: हाँ
0: रहते हैं, तो
1: जी
0: आपको खुद को बहुत ही बैलेंस करना पड़ता है। तो खुद के लिए एटलीस्ट मेरे पास है क्या। अब जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल गए थे, और वहाँ बोला, मैम इतना टफ रूटीन है, आई एम जस्ट बर्नट आउट, हमें सोने को भी नहीं मिलता, एक घंटा भी नहीं मिलता है। तो फिर उनको मैंने कहा, ठीक है, तुम ये सोचो कि कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे शूज़ में होना चाहेंगे, तुम्हारी जगह होना चाहेंगे, ग्रेटफुल रहो कि भगवान ने तुम्हें ये मौका दिया। तो ये लोग बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में,
1: जी
0: क्योंकि टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, और कितने ऐसे हैं जो टाइम पर अपने फ़ोन भी बंद कर देते हैं, तो डिटॉक्सिंग करना अपने आप को डिजिटल मीडिया से, क्योंकि अगर हर चीज़ अपने बारे में पढ़ने लगे तो और ज़्यादा टेंशन में आते हैं। तो मेंटल फिटनेस ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है रादर देन फिटनेस। ऑफ कोर्स बॉडी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आप एक ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, तो जिम के साथ साथ, डाइट के साथ साथ, मेंटल फिटनेस बहुत मैटर करती है, स्पेशली ग्लैमर वर्ल्ड में।
1: जी तो बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर रीता ने हमें बताई। हमारे एक लिसनर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो
2: हाँ जी मैम, नमस्ते
1: जी, नमस्कार, बताएं क्या नाम है आपका।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। मेरा नाम कमलेश है, ग्रेटर नोएडा से बोल रहे
1: अच्छा जी,
2: हैं।
1: कमलेश जी बताइए क्या पूछना है।
2: ये पूछ रही हूँ कि हम जैसे हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो पेट में दर्द हो जाता है, और जैसे जैसे रात का भोजन बचा हुआ होता थोड़ा बहुत, और सोचते क्या फेंकेंगे, इसको खा ही लें, कि आजकल महंगाई बहुत है, तो वो सही रहता है या नहीं।
1: खाना न्यूट्रिशन पे हम बात करें, कमलेश जी ज़रूर सुनिए हमारा प्रोग्राम, और सही न्यूट्रिशन के बारे में हमारे जो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। एक जो इनका प्रश्न है, ये बहुत कॉमन है, और ज़्यादातर लेडीज़ इस
0: करती
1: चीज़
0: हैं
1: को करती हैं, कि कोई चीज़ बची, और जो उन्होंने कहा वो भी सही है कि इतनी महंगाई है और कोई चीज़ को फेंकना भी ठीक नहीं। क्या कहेंगी, इस तरह का खाना खाया जा सकता है, और कितने घंटों तक बना हुआ खाना खा सकता है
0: जी।
1: आदमी।
0: मैं तो यही कहूंगी कि अपने शरीर को जो है डस्टबिन ना बनाएं, और जो है भोजन हमेशा फ्रेश खाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि 3 घंटे के बाद जो खाना बना हुआ है उसको 3 घंटे के बाद नहीं खाना चाहिए, वो तामसिक होने लगता है। तो जो सात्विक आहार भी आपको लगता है आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, अगर आपने उसको फ्रिज में रखा और नेक्स्ट डे खाया, तो उसके गुणों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो उतना ही बनाएं जितनी आवश्यकता है, और अगर बच जाता है तो किसी गरीब को दे दें, पर कोशिश करें कि आप हेल्दी फ्रेश फूड खाएं।
1: जी
0: जी
1: तो कमलेश जी आपको जवाब मिल गया, और कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे पास। ये हमें लिखकर भेजा है हमारे श्रोता हैं युवराज चौहान जी, कहाँ बुरहानपुर एमपी से इन्होंने मैसेज किया है कि मेरी उम्र 30 इयर्स है और हाइट 5'9" है, वेट 52 है। वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर लोग बोलते हैं कि कुछ खाया पिया कर, और मैं एक किसान हूँ, वैसे मैं 50 kg की बोरी उठा लेता हूँ, जिससे

0: हम पहले बात कर रहे थे, तो क्या कहेंगे आप लोग बताएं, क्या आपका इनके बारे में? 52 इज क्वाइट लेस अ
1: जी वेट तो कम है, बट अगर
0: वेट।
1: इतना हैवी वेट भी उठा लेते हैं, हमारे किसान हैं तो डेफिनेटली बहुत शक्तिशाली हैं और अपना डाइट और बढ़ा सकते हैं. इसका मतलब हो सकता है वो डाइट कम ले रहे हो, अगर उन्हें कमज़ोरी फील हो रही होती तो हम डेफिनेटली ये समझते कि कोई समस्या है उनके साथ, पर वो हेल्दी फील कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि इन्हें कोई समस्या है. तो डेफिनेटली आप योगाभ्यास भी कर सकते हैं और साथ में डाइट को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बढ़ाई जा सकती है, इसमें प्रोटीन्स बढ़ाए जा सकते हैं, तो समत्वम एक बैलेंस स्टेट में पहुंच जाएंगे. योग जो है सिर्फ वो वेट लॉस के लिए नहीं है, आप एक समत्वम एक बैलेंस स्टेट पे पहुंच जाते हैं उसे करके. तो योग के अभ्यास आसन वगैरह कर सकते हैं,
0: कर
1: बॉडी में
0: सकते
1: स्ट्रेंथ
0: हैं
1: भी आएगी
0: जी।
1: जी. और अपने डाइट पर थोड़ा और ध्यान दें, जो हाई कार्ब्स फूड हैं, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फूड है, मिलेट्स, ये सब जो हाई एनर्जी फूड जो हैं, वो सब डेफिनेटली अपनी डाइट में शामिल करें तो मदद मिलेगी.
0: मधु जी
1: अच्छा
0: हाँ,
1: मधु जी,
0: मैं आपसे पूछना चाह रही थी
1: हाँ
0: डॉक्टर
1: मैं
0: रीता
1: यही
0: जी।
1: कहने वाली थी कि मधु जी ने जैसे कहा कि अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है तो हो सकता है बॉडी कॉम्पोजिशन भी वैसी हो, पर इन्होंने जो ये बात कही ना कि लोग कहते हैं कि तुम बहुत पतले हो पतले हो, तो इन्हें मैं कहना चाहूँगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब भी लोगों को कोई काम होता नहीं, वो कुछ भी डिफरेंट देखते हैं, या हो सकता है आप इतने फिट दिखाई देते हो कि कुछ जेलस भी फील करते हैं लोग। और अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है, मेरा तो ये मानना है कि जेलसी एक किस्म की इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कि कोई आपको बोल रहा है कि आप फिट दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों की बातों में मत आइए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए, मैं ऐसा हूँ, आप फिट हैं, सोचने की कोई बात ही नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम होती तो अलग बात थी, पर अगर आप फिट हैं तो कबूल कीजिए कि मैं ऐसा ही हूँ। बार बार अगर आप इसके बारे में सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं पतला हूँ मैं पतला हूँ, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही शब्दों से, अपने ही थॉट से खुद को बीमार कर देंगे। और कई बार बीमारी हमारी सोच से ही आ जाती है, हम
0: जी
1: जब नेगेटिव सोचने लगते हैं, बाहर से किसी ने कुछ कहा और वो हमने सुना और वो हमारी बॉडी में नेगेटिविटी के रूप में बाहर निकलता है। तो आप बिल्कुल फिट हैं, बढ़िया हैं, आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, कबूल कीजिए कि आपकी बॉडी ऐसी है और आप खुश रहेंगे।
0: अच्छा, एक चीज़ और बताइए डॉक्टर गीता, जैसे हम जब सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, और कुछ लोग तो जैसे साइज जीरो की बात भी करते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: बहुत बहुत दुबले होते हैं, और वो लोग कोशिश भी करते हैं अपने को दुबला रखने की, तो वो फिट होते हैं? जैसे अभी आप कह रही हैं कि बहुत पतले हैं तो कोई बात नहीं,
1: हाँ
0: अच्छी
1: जी
0: बात है,
1: हाँ जी
0: तो फिटनेस और एक लुक्स, ये कहाँ पर बैलेंस कर सकता है आदमी, कैसे कर सकता है?
1: हाँ आपने बोला साइज जीरो वाले लोग फिट हैं, तो मैं कहूँगी फिट हैं.
0: है
1: पहली
0: ओके
1: बात तो ये कि जब आप फिटनेस की बात करते हैं तो कभी आप खुद से ये चीज़ शुरू मत कीजिए, आपको ऊपर से किसी गुरु की ज़रूरत है जो आपको
0: ओके
1: प्रॉपर डाइट बताए, प्रॉपर आपका रूटीन बताए, तब आप जीरो में जाएंगे. अगर आप अपने आप को भूखा रख के साइज जीरो के चक्कर में पड़ते हैं, या किसी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एनोरेक्सिया की बीमारी होती है, वो खाना खाती हैं फिर उंगली डाल के उल्टी कर देती हैं कि हाँ मेरे को पतला दिखना है, खाना अंदर नहीं रखना चाहिए, तो ये सब भी एक किस्म की बीमारी है. तो आपको पहली चीज़, अगर इस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, तो पहले किसी विशेषज्ञ को ढूंढे जो आपको प्रॉपरली गाइड सके, आपके खाने में, आपकी जिमिंग में, आपके हर चीज़ में. प्लस इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन. अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे और चीटिंग नहीं करेंगे, अब सामने खाने आ गया, खाना आ गया, आपसे कहा गया है कि आपको पेस्ट्री नहीं खानी है और आपको मना किया गया, लेकिन पेस्ट्री सामने है और आपसे रहा नहीं गया और आपने पेस्ट्री खा ली, तो फिर डेफिनेटली आप साइज जीरो पे नहीं पहुंचेंगे. तो आप देखेंगे कि ये जितने भी लोग अपने को मेंटेन करते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं,
0: जी
1: मतलब आगे कुछ भी हो सामने, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं. तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है एक अच्छी परफेक्ट लाइफस्टाइल में. और डिसिप्लिन कैसा, सुबह से लेके रात तक, आपके जगने से लेके सोने तक, हर पहर आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने फिटनेस के गोल को अचीव कर पाएंगे. आसान नहीं है बट होगा, एक दिन ज़रूर होगा. हिम्मत मत हारें, क्योंकि जब बीज बोया जाता है तो उसको पेड़ बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली, समय लगेगा पर होगा ज़रूर
1: बिल्कुल.
0: अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं, हेलो
2: हेलो, नमस्कार शालिनी
0: जी,
2: जी.
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बेदी जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ, सबसे पुराने योग की मैं ही हूँ.
0: नहीं, आपसे भी
2: अच्छा,
0: पुराने बहुत सारे लोग
2: मेरे
0: हैं।
2: को 27वां साल है.
0: अच्छा, आप योग करती हैं
2: हाँ
0: रेगुलरली?
2: हाँ मैं वो थी जो दो कदम नहीं चल सकती थी, तो फिर अब मैं 22 साल से उसी सेंटर की हेड हूँ.
0: चलिए बहुत अच्छी बात, लेकिन
2: हाँ
0: आपको भी कुछ पूछना है क्या, कोई
2: मैं ये
0: प्रश्न है?
2: नहीं, प्रश्न ऐसे है कि मैं इनके थ्रू एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि लोग जो टीवी देख के करते हैं वो ना सीखें.

0: क्योंकि ये कहेंगे तो लोग मान जाएंगे, हम गलत को करते हुए भी टोकेंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानता।
1: तो जैसा
0: हमें आता है,
1: जैसा अभी रीता मैम कह रही थी कि किसी को गुरु मान के और उनकी ही बात को देखे दिखाई मत करिए, तो ये बात कन्वे हमारी हुई है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं और इसी तरह से जुड़ा रहिया करिए और हमारे साथ इसी तरह से बात करती रहा करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हम ये बता दें अपने श्रोताओं को कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत अच्छी सिंगर्स भी हैं, दोनों की दोनों। तो पहले डॉक्टर रीता आप कुछ सुनाएंगी?
2: जी बिल्कुल, मेरा फेवरेट गाना।
1: हाँ सुनाइए प्लीज़।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस पर, फिटनेस मंत्रा। क्या है फिटनेस मंत्रा? अगर आप भी अपना फिटनेस मंत्रा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 पर हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके मैसेजेस का। कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं। एक मैसेज हमें किया है रवि जी ने और इन्होंने लिखा है दिल्ली से ही कि व्हाट लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी मोर, मसल्स और नर्वस सिस्टम? और दूसरा इन्होंने पूछा है कि जनरली विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इन योग, ब्रीदिंग या स्ट्रेचिंग? आप बताएं
2: जी। आई वुड से कि योग में जो है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन जो है विच इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इट विल फॉलो। अगर आपका मन शांत है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, तो डेफिनेटली आपकी मसल्स भी रिलैक्स होंगी।
1: अच्छा।
2: और दे आर इंटरलेटेड बेसिकली। हमारा जो

0: माइंड और बॉडी है वो एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और अगर आप तनाव में हैं आप देखेंगे आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, आप उतना फ्लेक्सिबल फील ही नहीं करते हैं, आपका मन शांत हो जाए तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपकी नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स, ये सब रिलैक्स हो जाते हैं, आपको बॉडी में पेन्स इस तरह की समस्याएं नहीं आती.
1: रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
0: वेरी इंपॉर्टेंट, राइट.
1: और ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग.
0: तो अगर हम क्या करते हैं, जब हम कोई आसन कराते हैं किसी को, तो हम उसमें भी कहते हैं आप श्वास के साथ करें इसे. तो आप आसन में सिर्फ फिजिकल कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप साथ में उसको श्वास को लेके चल रहे हैं. तो हम इसमें, अगर मैं योग सूत्र की बात करूं, तो उसमें यही है कि स्थिर सुखम आसनम, आसन क्या है जिसमें हम स्थिर हैं और सुखी हैं. तो महर्षि पतंजलि ने कहीं भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी एज सच वर्ड की बात नहीं करी, स्थिरता की बात करी है और कंफर्ट की बात करी है. तो जब आप स्थिर हैं, सुखी हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी विल फॉलो. एंड देन प्रतन शैथिल्य अनंत समापत्ति, यानी प्रतन के शिथिलता, मतलब रिलैक्स्ड वे में करने की बात की गई. आप जब रिलैक्स्ड वे में एक ही अभ्यास को बार बार बार बार करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकल लेवल पर इम्प्रूव होती है. एंड देन आफ्टर दैट आपके जो फिजिकल लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मस्कुलर टेंशंस हैं, जैसे कि जनरली तनाव में हमारी जो नेक मसल्स हैं, सब ऑक्सीपिटल्स, SCM मसल्स, ये सब टाइट हो जाते हैं, या सोआस मसल जो है जिसे हमारी इमोशनल मसल भी कहा जाता है, जिनको स्ट्रेस रहता है उनकी मसल्स टाइट हो जाती हैं. तो जब आप ब्रीदिंग पे काम करते हैं, श्वास पे काम करते हैं, मेंटल लेवल पर काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, योग निद्रा इस तरह के अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें एक एक मसल्स को, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन इज देयर, एक एक मसल को हम रिलैक्स करते हैं. तो मन पे काम करके भी हम शरीर पे काम कर सकते हैं, और शरीर पे काम करके हम मन पे काम कर सकते हैं.
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात भी थी. और देखिए, हमारे जो श्रोता है हमारे साथ जुड़ते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं इस कार्यक्रम से. और ऐसा ही कुछ हमें बताया है हमारी इस श्रोता ने. परिधि हैं, दिल्ली से लिख रही हैं, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड टॉपिक, मच नीडेड फॉर आर बिजी लाइफ स्टाइल. थैंक यू सो मच शालिनी जी. माई टेक अवेज फ्रॉम प्रोग्राम सो फार इज डिसिप्लिन एंड ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल फिटनेस, बोथ फिजिकल एंड मेंटल. तो ये हमारे श्रोता जब हमें बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम जिस पर्पज से हम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. और आप भी अगर शेयर करना चाहें कि आप क्या सीख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम से, और आपका फिटनेस मंत्रा क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का अपना अलग तरीका होता है फिट रहने का. कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग रन करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ योग करते हैं. तो आप अगर हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आप शेयर करना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं. एक लिसनर हमारे साथ जुड़ गए हैं. हेलो.
2: हाँ, हेलो मैम.
1: नमस्कार जी. नमस्कार.
2: और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्ते मैम.
1: अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी, मैं गिरीश चंद्र बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से.
1: जी, बताइए क्या पूछना है आपको.
2: तो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरा एक्सीडेंट में एक पांव कट गया था, घुटने से ऊपर से कटा हुआ है. तो योगा के लिए जैसे मेरे को थोड़ा बलगम वगैरह बनता है, कफ बनता है मेरे को, तो वो स्मोकिंग वगैरह थोड़ा करता हूँ तो कफ वगैरह बनता है, तो इसके लिए कुछ योगा है हमारे लिए मैम?
1: चलिए, मधु जी बता रही हैं आपको.
0: जी डेफिनेटली, योग सभी के लिए है, आप डेफिनेटली योग कर सकते हैं. योग में बहुत सारे ऐसे अभ्यास है, जैसे यौगिक सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं, वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रियाएं कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे जो षटकर्म के अभ्यास हैं, जिससे हमारी शुरुआत भी की जाती है हठ योग में, तो कुंजल का अभ्यास बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है. जैसे बोल रहे बलगम बनती है उसे बाहर निकालने में, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो आप जो है हमारे मोरारजी साई राष्ट्रीय योग संस्थान में भी आ सकते हैं. वी हैव अ OPD हेयर स्पेशली फॉर पेशेंट्स जिन्हें तरह तरह की प्रॉब्लम्स हों. सभी आयु वर्ग के योग और सभी हेल्थ इशूज कंडीशंस, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिन्हें हैं, वो पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें बहुत बेनिफिट होता है. तो हम योग की ही विभिन्न टेक्निक्स के थ्रू ने जो है हम ठीक उनको कोशिश करते हैं कि वो क्योर हो पाए, उनमें हीलिंग हो पाए बेसिकली. तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. पर हाँ, एक और बात यह है कि आपको स्मोकिंग छोड़ना होगा. तो वो आप उसको धीरे धीरे जो है कम करें. विड्रॉल सिम्टम आते हैं कभी कभी एकदम से छोड़ने पर, तो आप उसके लिए जो है डॉक्टर की हेल्प लें. और साथ ही साथ जो है अगर आप यौगिक जो है दिनचर्या जो है उसको अपनाते हैं, यौगिक रूटीन फॉलो करते हैं, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल.
1: और आपने बोला कि एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, और मेंटल रिलैक्सेशन से फिजिकल वेलबींग हो सकती है. तो मैं हमने सुना है कि कुछ चैंट्स भी होते हैं जिसको बोलते हैं कि आप इसको सुने या आप उसके साथ कुछ चैंटिंग करें, तो उस तरह के कुछ मंत्र के बारे में या चैंट्स के बारे में बताएं या कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सके हमारे श्रोताओं को.
0: जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी कि जो मंत्राज हैं वो जो है आसन है माइंड के लिए. तो अगर हम कहीं भी हमें एंग्जाइटी होती है, कोई परफॉर्मेंस एंग्जाइटी लाइक बिफोर एग्जामिनेशन या बिफोर एन इंटरव्यू, या आप सोचिए कोई प्रोग्राम ही टीवी में आपका शुरू होने वाला है लाइव, तो उससे पहले अगर आप ओम चैंट कर लें.
1: यहाँ किया है आपने?
0: मन ही मन कर लेते
1: ले.
0: तो बहुत ही हेल्पफुल होता है. इसके अलावा जो है हमारा जो वसुधैव कुट

मुकम की भावना से प्रेरित जो मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिना, मैं यहाँ पे चैंट करना चाहूंगी, तो वो अगर करें तो आप देखेंगे कैसे अब ब्रीदिंग एकदम रिलैक्स हो जाती है जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः,

0: शांति
1: बहुत वाह वाह क्या बात है सच में। एक अभी ही ऐसा फील हुआ कि हाँ इसको और सुना जाए, ये एक
2: सुनते रहे
1: अलग सी अनुभूति दे रहा है ना। तो अभी तो हम नहीं ये ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमारा प्रोग्राम खत्म होगा तो हम एक सेशन आपके साथ जरूर लेंगे। और ये इस तरह के जो आप चैंटिंग्स करते हैं, मुझे लगता है ये काफी रिलैक्स करता है अगर हम इसको बार बार सुने इस तरह का कुछ आप लोग क्या भी किया जाता है डॉक्टर रीता, आप लोग जब कोचिंग करते हैं तो इस तरह का कुछ चैंटिंग्स भी उसमें आप इंक्लूड करते हैं?
2: जी, चैंटिंग्स के साथ साथ हम लोग कुछ ब्रेथ एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जिसमें मधु जी भी जैसे बोली थी योगिक एक्सरसाइजेस, क्योंकि टेंशन जब हम लोग होती है हम अपने लंग्स को पूरा नहीं यूज करते, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं, लेकिन लंग की कैपेसिटी है कि कम से कम 5 लीटर ऑक्सीजन ले सकता है, हम बस 1 लीटर में काम चला रहे होते हैं। तो जब बच्चे स्टेज पे जाते हैं और वो ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल उनको समझ नहीं आता क्या करना होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम उनको योगिक ब्रीदिंग सिखाते हैं, जब पेट को आप बलून की तरह फुलाते हैं और हाथ रखवा के उनको महसूस करवाते हैं, क्योंकि हम अपना चेस्ट बॉक्स ठीक से यूज़ नहीं करते, एक तो वो कराते हैं, ऑफकोर्स ओम का उच्चारण कराते हैं, ताकि जैसे पहले भी किसी श्रोता ने बोला था कि आवाज़ को कैसे मधुर करें, तो आवाज़ को मधुर करवाने के लिए भी यही हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। प्लस उनको कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे बांसुरी बजाना, क्योंकि उसमें आपका फोर्स लगता है वो जब आप बांसुरी को बजाते हो, तो आवाज़ को ठीक करने के लिए आपकी आपको ठहराव देने के लिए मेंटली, जैसे कि आप स्टेज पे ब्लैंक नहीं हो जाएं। प्लस इसके बाद एक होती है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मतलब पैरों से उनको भींचना पड़ता है, पैरों के टोज से भींचते हुए ऊपर की तरफ आए और फिर पूरी बॉडी को एकदम टाइट करके फिर धीरे धीरे एक एक बॉडी पार्ट करके छोड़ा, और लास्ट में जब शरीर से आपके पैरों के नीचे से वो अर्थ हो जाती है नेगेटिव एनर्जी। तो बेसिकली यही टेक्निक्स मैम थोड़ी योगिक भाषा में बता रही हैं, मैं थोड़ी मॉडर्न भाषा में बता रही हूँ, बट बेसिकली यही टेक्निक्स हैं जो आपको रिलैक्स कर सकती हैं। प्लस इसके साथ साथ बच्चों को ये भी सिखाया जाता है, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, दिन में बहुत चीज़ें होती हैं उनके साथ, आजकल रिलेशनशिप इश्यूज है, ये है वो है, तो उनको ये भी सिखाते हैं हम लोग कि रात को सोने से पहले आपको अपने दिमाग को खाली करके सोना बहुत जरूरी है।
1: जी जी,
2: क्योंकि अगर आप दिमाग को खाली नहीं करते हैं और वही चीजें लेके सोचते हैं, परेशानी आती रहेगी, ठीक नहीं होंगे। तो उनको लिखाते हैं कि किस तरीके से आपको दिन में पहला तो अच्छा क्या हुआ, दिन में बुरा क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ उसके लिए थैंक यू, बुरा क्या हुआ वो पढ़ के, पढ़ना जरूरी है क्योंकि शरीर से निकालना है, जोर से एक बार बोल दो उसको और फिर हम उसको टुकड़े टुकड़े करवा के उस कागज को हवा में फेंकवा देते हैं कि भाई ये गई अब तुम्हारी, अब उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखना।
1: डज इट वर्क?
2: इट डज वर्क।
1: ओके,
2: बट देखिए फेथ, भगवान को किसने देखा नहीं देखा, पर हमें फेथ है कि भगवान है। तो ये सारी की सारी जितनी भी मॉडलिटीज हैं वो फेथ पर चलती हैं, आप फेथ से करोगे तो आप कुछ भी पा सकते हैं। तो यस, ये चीजें भी हम लोग भी पैजेंट के या मॉडलिंग के वर्ल्ड में जरूर करवाते हैं।
1: जी जी, और देखिए हमारे कुछ श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हैं वो अपने फिटनेस मंत्र भी हमें भेज रहे हैं, जैसे हमने उनसे इनवाइट किया था। आलोका जी लिख रही हैं, 54 ईयर्स की हैं, नोएडा में रहती हैं, आई एम प्रैक्टिसिंग योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डेली फॉर 45 मिनट्स, आई एम फीलिंग सम पेन इन माई शोल्डर्स बट आई एम वेरी डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। तो ये सारी चीज़ें ये फॉलो कर रही हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं वॉक भी करती हूँ, कुछ थोड़ा एलर्जी है परफ्यूम डस्ट एंड पॉल्यूशन से, पर आपका सेशन मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव लग रहा है। तो थैंक यू सो मच आलोका जी, और आपके गाने की तारीफ आई है।

0: सिलचर आसाम से.
1: सो मच
0: जी, हमारे लिखने वाले श्रोता हैं मीरा सिंह, लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया और एक्सलेंट वॉइस, मुझे बहुत पसंद आया ये गीत. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं. और ये नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा है कोटद्वार उत्तराखंड से कि अगर प्रेम से रहा जाए और पर पीड़ा को समझा जाए, जिसका बहुत आजकल अभाव है, तो भी और शुद्ध पर्यावरण हो, तो ये सारी चीजें भी हमें फिट रख सकती हैं. क्या कहेंगे?
1: बिल्कुल, इनको मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारी इंसानों की आदत होती है कि हम पास्ट को साथ में लेके बहुत चलते हैं. कल क्या हुआ, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इतना पास्ट को जब हम साथ में लेके चलते हैं, वो तो बीत गई, अब उस पर मुड़ के तो हम जा नहीं सकते, तो आज क्यों खराब करना है पास्ट के बारे में सोच सोच के. तो कई बार वो भी हमारे हेल्थ को खराब करता है जब हम पास्ट में लोगों को फॉरगिव नहीं करते या खुद को ही फॉरगिव नहीं करते, गिल्ट की फीलिंग में रहते हैं. तो कई बार खुद को भी फॉरगिव अगर आप करेंगे और आप खुद ही देखेंगे कि आपकी हेल्थ में भी बहुत परिवर्तन आएगा.
0: जी, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, खूबसूरत सा गीत सुनकर वापस आते हैं. आप हमें यूं ही लिखते रहिए, बताते रहिए अपना फिटनेस मंत्र और रेडियो डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए.

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और थोड़ा सा ही समय बाकी है लेकिन बहुत सारे आपके मैसेजेस हैं। यशपाल जी हमें द्वारका दिल्ली से लिख रहे हैं, वेरी नाइस टॉपिक शालिनी जी। फॉर माय फिजिकल फिटनेस आई ट्राई टू फॉलो अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, बैलेंस्ड प्रॉपर डाइट, मेंटल लेवल पे ओवर थिंकिंग नहीं करता हूँ, एंग्जाइटी इश्यूज पर कंट्रोल करता हूँ, मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग भी मैं करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ये करते हैं, इसके अलावा भी कुछ छूट गया तो बताइए।
1: मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा छूट गया है, लोग उसको इग्नोर ही करते हैं इसलिए किसी ने बोला नहीं इसके बारे में।
0: अच्छा बताइए।
1: हाइजीन,
0: ओके,
1: हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ सफाई हमारे शरीर की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर आप हाइजीन नहीं रखेंगे आपके बालों में, आपके स्किन में, आप मुंह से बात करेंगे तो आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपके हाथ गंदे हैं, पहली चीज़ तो लोग ही आपको इग्नोर करने लगेंगे, फिर आप सोचेंगे लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फिर आप लोनलीनेस में चले जाएंगे, फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के आएंगे। और इसके अलावा इतना खूबसूरत शरीर भगवान ने हमें दिया जिसमें हमें ना जाने कितने साल रहना है, करोड़ों का शरीर है, सोचिए जिनके पास शरीर के कुछ हिस्से नहीं होते वो उनके लिए कितना तरसते हैं। हमारा एक एक हिस्सा करोड़ों का है और हम उसको इस तरीके से निग्लेक्ट करते हैं कि लोग कई बार ध्यान नहीं देते। तो हाइजीन बहुत ज़रूरी है ताकि लोग भी आपके साथ बात की करना चाहें, आप साफ सुथरे दिखें, और नेचुरली ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक अच्छी पर्सनालिटी का भी होने का, तो हाइजीन का भी ध्यान ऊपर से नीचे।
0: बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ऐड की और समय हमारे पास थोड़ा सा कम है लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रही थी, क्योंकि हमने जो आज का जो विषय रखा है वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक महीना पहले किया है हमने ये कार्यक्रम, तो एक इंटेंशन है करने का कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और इस पूरे साल में हम जो जो गतिविधियां करते हैं उसमें तेजी आती है जब इस महीने में हम कार्यक्रम करते हैं, तो इस बार जब हम ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, डॉक्टर मधु खुराना हमारे साथ हैं, किस तरह के बदलाव या किस तरह के अचीवमेंट्स पे आप बात करना चाहेंगी या कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए उसके बारे में बताना चाहेंगी?
2: जी मैम, इस बार जो है हमारे जो योग महोत्सव में 13 मार्च को जो मनाया जाता है, विच इज द काउंट डाउन टू 100 डेज, लाइक वहां से शुरुआत हो जाती है, बिल्कुल बच जाता है कि अब जो है योग डे आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय, तो उसमें एक हमारा कैंपेन है आयुष मिनिस्ट्री का, योग 365, वो लॉन्च किया है हमारे माननीय जो आयुष मंत्री हैं उन्होंने, तो उसमें ये है कि आप एक टोल फ्री नंबर है उस पर जाकर, विच इज़ 1-800-315-7008, या फिर आप आयुष मिनिस्ट्री के पोर्टल पे जाकर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम कॉन्टैक्ट नंबर देकर, वो आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेजेंगे जिसमें कि 14 दिन का फ्री आपको योग जो है चैलेंज दिया जाता है, मतलब आप सेशन अटेंड कर सकते हैं, इस तरह की सुविधा दी जा रही है, सभी इससे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं डेली जो हैं, किसी न किसी आइकॉनिक प्लेस पर जो है योग जो है सेलिब्रेशन मास लेवल पर किया जा रहा है। अभी रिसेंटली हमारा 50th जो योग डे सेलिब्रेशन 2 मई को हुआ है काना शांतिवनम में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, जहां पर एक रिकॉर्ड भी बना है जिसमें 6000 से अधिक लोगों ने भुजंगासन का अभ्यास एक साथ किया है। भुजंगासन इज वेरी गुड आसना फॉर चेस्ट एक्सपेंशन, जो जिनको ब्रीदिंग की समस्या होती है, या फिर इट स्ट्रेंथन द बैक मसल्स, जिन्हें कमर दर्द की जो मस्कुलर इश्यूज रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, उसे दूर करने के लिए भी और उसकी प्रिवेंशन के लिए भी। तो उसका एक एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और अभी हमारा 25th डे टू IDY आने वाला है, दिस 27 मई को हमारा जो है खजुराहो में, विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, वहाँ पर जो है हमारा 25th डे मनाया जाएगा जिसमें सब लोग मिलकर कॉमन योगा प्रोटोकॉल का एक साथ अभ्यास करेंगे, चूँकि तैयारियाँ जो है चल रही हैं साथ साथ। और इस बार नया यही है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सिर्फ योग इंटरनेशनल योग डे तक ही योग सीमित ना रह जाए, आप इसे अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाएं, यानी डेली योग अभ्यास करें, ऐसा मैसेज जो है हम देना चाहते हैं। उसी के साथ मैम ने जैसे बात करी हाइजीन की, तो मैं ये कहना चाहूँगी योग में भी हाइजीन का कॉन्सेप्ट आता है, नियम के अंतर्गत शौच की बात की जाती है, हमारे जो षटकर्म के अभ्यास है वो मैम ने जो आउटर जो बात करी कि हाइजीन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इंटरनल क्लींजिंग की बात भी योग करता है। और यौगिक जो एटीट्यूड है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है लोगों में, जैसे कि ईश्वर परिधान मैम ने बात करी, सरेंडरिंग एटीट्यूड की, एक्सेप्टेंस की, तो योग भी इसी की बात करता है, कर्म योग की बात करता है कि आप कर्म करें और फल की इच्छा छोड़ें। मैं कहूँगी लोग आसन तो कर लेते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, हालांकि प्राणायाम उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, आसन ज़्यादा करते हैं, बट उसके साथ यम नियम को फॉलो अगर करें तो जो है उसका रिजल्ट कहीं गुना ज़्यादा अच्छा आ सकता है।
0: जी, बहुत ही ज़रूरी बातें आपने बताई, ये हमारे आज के प्रोग्राम की टेक अवेज हैं। आप भी चलते चलते डॉक्टर रीता क्या कहना चाहेंगी, क्या आपका मैसेज रहेगा हमारा इस कार्यक्रम के
1: श्रोताओं से?

0: कहना चाहूंगी कि जिंदगी की रेस जीतने से पहले शरीर को दौड़ने लायक तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे इस जिंदगी की रेस में। तो मैं एक शायराना अंदाज में कहना चाहूंगी कि काम इतना करो कि हमेशा व्यस्त रहो, और पैसा इतना कमाओ कि हमेशा मस्त रहो, और व्यायाम इतना करो कि हमेशा स्वस्थ रहो। क्योंकि स्वास्थ्य जब तक आपके पास है तब तक सब कुछ है। जिस दिन स्वस्थ नहीं रहेंगे उस दिन आप कुछ भी जिंदगी में पाना चाहेंगे तो भी पा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है।
1: बिल्कुल, हेल्थ इज एवरीथिंग। और एक आप बहुत प्यारा सा एग्जांपल मुझे बता रही थी, वो भी बताइए श्रोताओं को।
0: जी,
1: एक आपने मुझे बताया था कि लाइफ को हम कुर्सी से कंपेयर कर सकते, तो मैं चाह रही थी कि मेरे श्रोता भी उसका उस ज्ञान को लें।
0: जी, कि किसी टीचर ने बच्चों से एक बहुत सुंदर कुर्सी दिखा के पूछा था कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग कौन सा है। किसी ने कहा पीठ, क्योंकि पीठ लगती है, किसी ने कहा हत्था जिस पे हाथ रखते हैं, पैर रखते हैं, अलग अलग चीजें बताई, लेकिन टीचर ने कहा नहीं, ये कुर्सी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। कुर्सी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कीलें जो इसे जोड़ के रखती हैं। तो यही बात है कि जिंदगी की कीलें जो हमें जोड़ के रखती हैं, जैसे हैप्पीनेस है, हमारा एनर्जी है, लव है, पीस है, हार्मनी है, गुड रिलेशनशिप्स हैं, वो कीलें हैं जो हमारे शरीर को जोड़ के रखती हैं। शरीर का कितना भी ख्याल रख लो, लेकिन अगर कीलें आपकी कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई तो कुर्सी गिरेगी ही गिरेगी। तो ये भी बहुत ही
1: प्यारा सा एग्जांपल है और याद रखने लायक है। और हमारे इस प्रोग्राम की कीले तो हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और मजबूती से जुड़े रहते हैं, इसीलिए हमारा कार्यक्रम पसंद किया जाता है। हमारे श्रोता हमें लिखते हैं कि ये उसको पसंद करते। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर पाठक जी, आशा पाठक जी नीदरलैंड से हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और सुनिधि चौहान जी ने भी हमें लिखकर भेजा है, नाम नहीं, इनका गाना सुनना चाहते थे लेकिन अगले कार्यक्रम में आप लीजिएगा। नाम है दिनेश अजय, गोकुलपुरा दिल्ली से आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। किरण जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इम्तियाज मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही, बहुत सारे कोमल चंद साहू छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। सबके सवाल तो हम नहीं ले पर धन्यवाद देना चाहेंगे। इसी तरह से आप लिखते रहिए, सुनते रहिए और अपना पसंदीदा कार्यक्रम लिखकर हमें बताते रहिए कि कैसा लग रहा है। आप हमें लिख सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर। अब स्वीकार करिए मेरा नमस्कार और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर मधु खुराना को और डॉक्टर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों,
0: यहाँ शुक्रिया,
2: धन्यवाद मैम।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स, हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या

0: नहीं, 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश सुसोलिस आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत, जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर 1 रेडियो, आपका अपना रेनबो, दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो हम अक्सर मूवीज़ में जो देखते हैं सर, वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड ज़ीरो। तो वो सिचुएशन वहाँ पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में, जिसमें एक बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती साल

0: में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क बीएसएफ को दिया गया था। और बीएसएफ उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
1: जी।
0: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
1: जी,
0: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में बीएसएफ के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
1: जी।
0: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
1: बिल्कुल
0: जैन के असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
1: जी,
0: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर के सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा, ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया, और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है, पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
1: मतलब इतना बड़ा आतंकवादी और
0: इतना बड़ा
1: जी कि सब
0: कि भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पे हमला करते हैं, जिस पे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी, और ये मौका मुझको मिला। बीएसएफ के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था, और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
1: जी।
0: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
1: जी।
0: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका की कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जैन के पुलिस बीएसएफ का बड़ा अहम किरदार रहा। और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया, लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
1: जी,
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा, और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए, और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। बीएसएफ ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा मेरी बटालियन ने, और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलोअप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में 3rd फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: गाजी बाबा और उसके दो साथ

0: व्यक्तियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड यूएसए इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पर गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही। और
1: बिल्कुल
0: बीएसएफ को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
1: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है। और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया, और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ बड़ा करना
0: है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए। और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक।
1: बिल्कुल।
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन। हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को बनाया था, डिजाइन
1: अच्छा।
0: किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट लिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई, अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था। और सारी कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज़ नहीं करेगा, शू की आवाज़ नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में। और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा, 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले हमारे पर फायर करे, हमारे
1: या वो भागने की कोशिश करे,
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी।
1: अच्छा।
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि इंटरनली भागने का भी एस्केप रास्ता था। और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे
1: जी,
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया है बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर शायद, सही जगह नहीं आए। और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था।
1: अच्छा।
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था, नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं,
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा
0: था जिसका हमको इल्म नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो वो शीशा

0: एंट्री पॉइंट था। शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था, अच्छा, पाकिस्तानी टेररिस्ट, दोनों देख रहे थे। उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा,
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
1: ओके,
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
1: अच्छा,
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है। और इस ऑपरेशन में बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी।
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों,
1: अच्छा,
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो दो ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। तीन ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है। अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और उसके बाद उस सेकंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ कि BSF के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए
1: जी,
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
1: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया,
0: आप उस वक्त सिर्फ हाथ का अंदाजा,
1: सिर्फ हाथ का,
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा
1: जी।
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही OT में पता लगा। डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी। सर, हम इसकी बात जिसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग, और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथी लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरीज रही
0: जी,
1: वो बहुत ज़्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी, जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया, उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है।

0: तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि मुझे दिख रहा था
1: जी,
0: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
1: जी,
0: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका ख़राब ब्लड होता है बैग के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ शरीर में, कहाँ कहाँ चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
1: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
0: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
1: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी 7 गोलियां शरीर में,
0: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा क्योंकि हाथ का विजिबल था
1: जी,
0: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संग यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पर ड्राइंग रूम में लगा रखा,
1: जिसने आपका दिल बचाया
0: उसमें, यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशंस भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है, फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
1: फेंट हो जाता है, और फिर
0: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा, मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
1: जी, जी, जी।
0: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं
0: हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई, और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे
1: जी,
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू, एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
1: जी,
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर्स हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग
1: जी,
0: रहा था
1: जी।
0: मैंने कहा सर फॉर वॉट, बोले कि You created the history and Ghazi Baba has been killed, main accused of Indian Parliament attack, and whole country, whole nation and BSF is proud of you and BSF team. तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफू
1: खत्म हो गया, सही
0: नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी,
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उसे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
1: जी, जी,
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना, वो कहीं कहीं उसका पेन कम हो जाता है
1: यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी, कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा। और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो नमूने पेश करता।
0: 9 years वैली में 1994 से 2001 तक ही वाज़ अन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस सारीमर्क किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद जेएनके असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001, तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
1: जी,
0: परिंदा नहीं पर मार सकता, तो इतना बड़ा प्लान,
1: इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा आतंकवादी
0: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
1: जी,
0: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया, थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस और पार्लियामेंट्री स्टाफ कि उन्होंने इतने बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान।

0: खेल के, और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
1: बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सर। यहाँ पर
0: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल
0: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है।
0: मैं
1: ये
0: अपॉर्चुनिटी देता हूँ क्योंकि बीएसएफ एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल।
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के,
1: बिल्कुल
0: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
1: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला, देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
0: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी,
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
1: जी।
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए जी,
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा,
1: बिल्कुल।
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है,
1: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
0: बटालियन का हेड था
1: जी, मेरे आप लीड कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था। मैं चाहता तो अपने किसी नंबर टू को भेज सकता था, नंबर थ्री को भेज सकता था,
1: लेकिन आप फ्रंट पर रहे।
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल।
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस
1: जाता, मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो,
1: बिल्कुल।
0: गाजीबाव के माथे में घुसना कोई सिंपल।
1: और जैसा आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं, हम
1: मिलता नहीं।
0: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते,
1: बिल्कुल,
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो। एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स।
1: दुबे सर यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी हैं कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
0: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
1: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से। सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माई लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
0: So great words, because we still remember the bloodshed in Australia, the Bondi Beach, very recently by the ICS cadres. हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट अगेन एंड अगेन। एंड दुबे सर को, आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है या सिलजर असम से?
0: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी, तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे, तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है,
1: बिल्कुल।
0: ये वर्ड उनके थे।
1: अच्छा।
0: बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
1: जी जी बैच जो
0: बच्चन,
1: हाँ अच्छा जी,
0: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
1: जी,
0: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है, और वो रिप्लिका भी मेरे पास रखी है
1: वो आपकी यादगार।
0: आप में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
1: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
0: फिल्म
1: अनबिलीवेबल,
0: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
1: जी,
0: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है,
1: बिल्कुल,
0: और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती,
1: बिल्कुल,
0: है।
1: सर एक चीज लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
0: होते हैं।
1: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
0: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता,
0: वहां
1: जान जाएगी या जान ली जाएगी।
0: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
1: या मरने का,
0: तीसरा कुछ नहीं होता,
1: तीसरा कुछ नहीं, या तो
0: मतलब दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
1: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं,
0: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा, और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं,
1: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं सर, ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं यूपी से।
0: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे

0: आया है,
1: जी
0: क्योंकि आप पीसीएम से हैं,
1: जी
0: 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक के क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा, और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं, प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
1: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं। जय हिंद सर, आपको सुन रही हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
0: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं, जिसके नाम पे बी के दत्त है।
1: जी,
0: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पौश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है, तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच
1: सर। देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को, पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

0: सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए BSF में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं
1: आप इस मौके पर, मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है
0: जी,
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला मैसेज चिट्ठी के जरिए आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी।
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके,
1: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई, तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सकें।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए
1: होती थी।
0: यस। अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज़्यादा था
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे। जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा, 12वें दिन गाँव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और एक साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में, और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े ज़बरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो यस, तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पर बैठ के सुनाते अच्छा। थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था, तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसे वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं, ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है।

0: तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी उसने। उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं कर सकते थे, और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
1: बिल्कुल, तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है बीएसएफ में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है वो, उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
0: बीएसएफ में एंट्री के लिए तीन लेवल है, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल।
1: जी,
0: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है।
1: ठीक है,
0: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू। ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
1: बिल्कुल,
0: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
1: बिल्कुल,
0: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है।
1: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूँगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आप का जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है, और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप यूएसए, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं, इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
0: इस इंजरी के बाद में एक दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया।
1: जी,
0: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्करे तोयबा की तरफ से।
1: जी,
0: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए क्रिएट हुई।
1: जी,
0: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा, और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में सरकारी।
1: तो 25 साल जो सर आपने बीएसएफ में दिए, उसके अलावा
0: ये 9 वर्ष एनआईए में।
1: अच्छा,
0: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया।
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है।
1: अच्छा,
0: मेरे दिल से लगा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया।
1: अच्छा,
0: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है, जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं।
1: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, एफएम रेनबो की ऑल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
0: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
1: अच्छा,
0: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे, तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए। बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक।
1: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
0: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है।
1: जी,
0: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी।
1: जी,
0: और बड़ा उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की थी।
1: बिल्कुल,
0: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी।
1: ओके,
0: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है।
1: जी,
0: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजेडी हुई थी देश में।
1: जी जी जी,
0: कश्मीर में, तो वो एक वजह है, बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये।
1: जी सर, एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं, यश शिंदे हैं ये।

0: आई जी नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप। नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप। चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
1: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप जज्बाती हैं,
0: बिल्कुल
1: देश प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
0: और सर, यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें। जैसे आप मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
1: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है, आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं
0: जी।
1: तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया, और आप जिस शख्सियत से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG BSF। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही है रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

0: फ्लोरिडा ते अंदूरा मिला के वो एक ऐसा कोरल जिहड़ा ड्राई टॉर्टुगास नेशनल पार्क दे विच उन्हां ने डिप्लॉय किया है, जिहड़ा एक गर्म हो रहे समुंदर दे विच, वध रहे तापमान वाले समुंदर दे विच भी वो उग सकता है, वड्डा हो सकता है।
1: मतलब एहो जिहा ढीठ जिहा कोरल जिहड़ा कि हुण गर्मी नूं भी मात दे देगा। ते बस सल्यूशन तां मरीन बायोटेक्नोलॉजी बहुत वड्डा लैके आई है साडे सारयां लई, क्योंकि कोरल्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है समंदर नूं बैल दे इकोसिस्टम नूं बैलेंस करन दे लई। ते ए बहुत वड्डी रेवोल्यूशन है जिसनूं सानूं लगदा है सारयां नूं एप्रीशिएट भी करना चाहिए। ते एक
0: बिल्कुल
1: प्यारा जिहा गीत भी सुनी लेना चाहिए।

102.7 FM रेनबो प्रोग्राम लव यू जिंदगी, मैं तुहाडे नाल RJBK मान गल कर रही सी। मैं तुहाडे नाल सिमरनदीप कौर खैरा होना दी, जिन्हां ने UPSC दा एग्जाम क्लीयर किया। तीन बार हारन तो बाद चौथी बार उन्हां नू सफलता मिली ते पूरे भारत दे विच उन्हां दा रैंक आया 15th, 15वां रैंक उन्हां नू मिलिया। ते उन्हां नू जदों पुछया गया ना कि तुहाडी इंस्पिरेशन कौन सी, जिवें मैं लव यू जिंदगी प्रोग्राम की शुरुआत की सी कि कदे कदे कोई बंदा आउंदा है जिस तो असीं इंस्पायर हो जाने जिंदगी विच, ओह कहिंदे कि इदां ही ना साडे कॉलेज दे विच एक फंक्शन सी, एक ऑफिसर आए, हुण मैं भुल रही हाँ कि शायद वह PCS अफसर ही सन, तो वह आए तो जदों मैं उन्हां नू देखिया तो मैनू लग्या कि किन्ना सोहना लगता है ना जदों कोई ऑफिसर बन के आउंदा। तो मैं उन्होंने बाद विच पुछया सिमरनदीप कौर खैरा जी नूं, हुण तुहानूं किवें लग रहा है, तुहाडे स्कूल कॉलेज दे विच किवें सारा कुछ हो रहा है? तो वह कह रहे बहुत वधिया लग रहा है, मैं जिथे जा रही हाँ बहुत प्रेज मिल रही है। तो खैरा जी दे पेरेंट्स कहिंदे ने कि असी जिंदगी दे विच नहीं सोचा सी कि साडी बच्ची जिहड़ा पेपर पढ़ रही है, जिस पेपर दी वह तैयारी कर रही है, सचमुच इन्ना औखा पेपर है। कहिंदे ने जदों रिजल्ट आया असीं सोचा कि एक दो दिन दे लई सैलीब्रेशन होगी, पर सानू हौली हौली पता लग्या कि साडी बेटी पिछले 4 सालों तो जिस एग्जाम नू क्लीयर करन दे लई मेहनत कर रही सी, वह एग्जाम किन्ना मायने रखाउंदा है, एक किड्डे वड्डे पेपर दी साडी बेटी तैयारी कर रही सी। खैरा मैडम सचमुच बहुत ज़्यादा मेहनती, कई सालों तो लगातार वो पढ़ रहे, उन्हां दी मेहनत आई ते हुण उन्हां नू कामयाब हुंदिया देख के होर भी साडे बच्चे बच्चियां इहो जे पेपरां दी तैयारी करन दी जरूर सोचते होणगे। एक होर मैडम दी गल करांगी मैं तुहाडे नाल, उन्हां दी उम्र भी बहुत छोटी है, किन्नी छोटी, जिस उम्र दे विच उन्होंने कामयाबी हासिल की उस दे लई तुहानू थोड़ी जी उड़ीक करनी पैनी है। प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच गाणियां दे नाल नाल मैं तुहाडे नाल गल्लां भी ते कर रही हाँ, ते गल्लां दे नाल नाल तुहानू गाने भी सुना रही हाँ। ते बस फिर इस गाने तो बाद फिर मिलदी हाँ मैं तुहानू।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी पीएसयू ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी बीएमसी चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in @prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना,

0: आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है जो सिर्फ केंद्र सरकार सूबा सरकार जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 102.7 FM ਰੇਨਬੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਖਬਰਾਂ।

0: अलर्ट जारी कर दिता है। दोवे राज पिछले कुछ दिनों तो अत की गर्मी की मार चल रहे ने ते वध तो वध तापमान 40 तो 46 डिग्री सैलसीयस दरम्यान है, जो ना सिर्फ मनुखां नूं सगों पंछियां ते जानवरां नूं भी परेशान कर रहा है। मौसम विभाग ने फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मुकतसर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर ते पटियाला जिलों में कुछ थावां ते लू चलण की चेतावनी दिती है। हरियाणा में भी ज्यादातर थावां ते गर्मी की लहर तो लैके गंभीर गर्मी की स्थिति होने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम विखे गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स नाल शाम 7:30 बजे होगा। आखिर च खास खबरां। सरकार ने अज मुड़ भरोसा दवाया कि भारत कोल कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस ते एलपीजी की काफ़ी सप्लाई है। केंद्रीय रेलवे राजमंत्री रवनीत सिंह ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज की उसारी तो बाद लैवल क्रॉसिंगस नूं बंद करना हुण लाजमी नहीं है। काउंटर इंटेलीजेंस अमृतसर ने दो व्यक्तियों नूं हेरोइन ते पिस्तौला समेत गिरफ्तार करके नशीले पदार्थों ते गैर कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। ते पंजाब ते हरियाणा में 26 मई तक जबरदस्त गर्मी ते तेज हवावां दे कई हिस्सों नूं प्रभावित करन दी संभावना है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन शाम 7:30 बजे होएगा। नमस्कार।
1: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ 102.7 FM ਰੇਨਬੋ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ।
2: ਆਨੋਸ ਯੇ ਹੈ ਫਮ ਰੇਨਬੋ, ਇਸੇ ਕਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ।
1: ਵਨ ਜ਼ੀਰੋ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਵਨ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ ਲਵ ਯੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम लव यू जिंदगी हुण खत्म हो रहा। वरुण कौर मान ने तुहानू बाय बाय कह देनी। अगले आरजे स्टूडियो दे विच पहुंच चुके ने, उन्होंने आके हले तुहाडे नाल बहुत सारी गलबात करनी है। उम्मीद है कि प्रोग्राम नू तुसी सुनिया भी होना ते पसंद ता तुसी कर ही लिया होना, क्योंकि मैं इन्नियां वधिया वधिया गल्लां जो कीतियां ने ते गल्लां भी उन्हां दीआं कीतियां ने जिन्हां ने जिंदगी दे विच वधिया वधिया मुकाम हासिल करके साडे लई नवी इंस्पीरेशन कायम कीती है। सो खुश रहो, जिंदगी नू प्यार करदे रहो। हाँ, जे कोई इदां दा बंदा मिलदा ना जिहड़ा जिंदगी च कुछ हासिल कर रहा, बस भई उहनू देख के सोच लो आपां भी वधिया कर सकते हैं। बाय बाय। 102.7 FM रेनबो विद आर जे।

नमस्कार, पेश नई एफएम न्यूज हेडलाइंस। सरकार ने आज मुड़ भरोसा दवाया कि भारत को कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस ते एलपीजी की काफी सप्लाई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 ले यात्रियों की चोन ले ड्रॉ कढ़िया। यात्रा जून च शुरू होएगी ते अगस्त च समाप्त होएगी। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने खेतीबाड़ी च एक नवा आलमी मॉडल पेश किया है। अफ्रीका च सेहत स्थिति बिगड़न कारण भारत अफ्रीका फोरम सम्मेलन मुलतवी। केंद्रीय रेलवे राजमंत्री रवनीत सिंह ने कहा है कि रेलवे ओवरब्रिज की उसारी तो बाद लेवल क्रॉसिंग्स नू बंद करना हुण लाजमी नहीं है। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने दो व्यक्तियों नू हेरोइन ते पिस्तौलों समेत गिरफ्तार करके नशीले पदार्थों ते गैर कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। अमृतसर के अनगढ़ इलाके च एक घर अंदर नाजायज पटाखे बनाने करके भयानक धमाके हुए ते अग लगन के हादसे दौरान एक औरत की मौत ते एक बुरी तरह जख्मी हो गया। पंजाब ते हरियाणा च 26 मई तक जबरदस्त गर्मी ते तेज हवावां दे कई हिस्सों नू प्रभावित करन दी संभावना है। इस एनएफएम न्यूज हेडलाइन सुन तो कुछ पलों बाद तुसी साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे, फिल्मी दुनिया।

0: जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: याहू, हरीश दे नाल तुसी बने हुए और प्रोग्राम चल रहा है फिल्मी दुनिया। सुबोध मुखर्जी दे बारे असी गल कीती और हुण अगे वधदे आं और एक होर पर्सनैलिटी दी चर्चा करदे आं। वह पर्सनैलिटी जिन्हां दी भी पूरी फैमिली जिहड़ी है फिल्म लाइन दे नाल जुड़ी हुई है और उन्हां दा भी एक बड़ा ही पुराना इतिहास है। इतिहास नहीं और मौजूदा समय दे विच भी वह एक नामी प्रोड्यूसर, डायरैक्टर, एक्टर, मतलब उन्हां दी फैमिली दे विच किसी भी चीज़ की कमी नहीं हैगी और उन्होंने बैनर के तले कम करन दे लई वड्डे तो वड्डा एक्टर, भावें कोई सलमान खान होवे, शाहरुख खान साहब होण, अमिताभ बच्चन साहब होण, वड्डे वड्डे एक्टर जड़े ने उस बैनर दे नाल कम करन दे लई बड़े उतावले होंदे ने। जदों भी कम करदे ने तां अपने आप नूं बड़ा प्राउडी फील करदे ने। बहुत सारे मेरे लिसनर इस वेले समझ चुके होणगे कि मैं किस बैनर की गल करन वाला। मैं गल कर रहा यश चोपड़ा साहब दे बेटे आदित्य चोपड़ा दी। बिल्कुल, और यश यानी कि यशराज बैनर मतलब किसी भी तारीफ का मुहताज नहीं हैगा और उन्हां दियां फिल्मां जिहड़ियां ने वो असी वेखदे हां और उन्हां दियां बनाईयां हुईयां फिल्मां तो सानू पता है, बट उन्हां दे बेटे ने जिहड़ियां फिल्मां बनाईयां वह भी घट नहीं और गज़ब का टैलेंट। उन्हां दे बारे गल करांगे क्योंकि उन्हां दा अज हैप्पी वाला बर्थडे है और आ जाओ फिर एक ट्रैक इंजॉय करते हैं तो फिर वधदे हां अगे।

हमको हमी से चुरा लो मोहब्बतें फिल्म दा एक कमाल दा रोमांटिक दिल नु छूण वाला गाना तुसी एंजॉय कीता और आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म नु भी डायरेक्ट कीता सी और तुहानू दस दें कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दे विच प्यार दी शिद्दत एक अलग लैवल दी विखाई उस तो बाद कुछ कुछ होता है दे विच प्यार दोस्ती है विखाया उस तो बाद मोहब्बतें दे विच प्यार दी अलग तरह दी परिभाषा साढ़े तक पहुंची और उस तो बाद रब ने बना दी जोड़ी तुझ में ही रब दिखता है यारा मैं क्या करूं और इस तरह फिल्मां दे अलग अलग एंगल्स नू विखाउंदिया होया प्यार दियाँ अलग अलग कहानियां विखाउंदिया होया उन्होंने वो फिल्म बनाईया जो साढ़े दिल तक पहुँचियाँ और तुहानू दस दें कि 2012 दे विच आदित्य चोपड़ा ने वायर एफ स्पाई यूनिवर्स की स्थापना भी की यानी इस बैनर के तले उन्होंने नवे आर्टिस्ट नू मौका दिता जिवें मैं पहला गल कर रहा सी नवे एक्टर राइटर लिरिसिस्ट एक्टर सब नू मौका दिता जिसे तले फिल्मां भी बनिया वॉर टाइगर 3 पठान और एक था टाइगर टाइगर जिंदा है और हुण कहा जा रहा है कि इसे बैनर के तले वॉर 2 पठान 2 ते टाइगर वर्सेज पठान भी बनने वाली ने और इन्हां फिल्मां नू जिहड़ियां फिल्मां इन्हां दे बैनर तले बनियां तां वह फिल्मां ने करोड़ां च कारोबार तां कीता ही कीता और अज भी ये जारी है आदित्य चोपड़ा दी वाइफ रानी मुखर्जी जिन्हां ने मरदानी फिल्म दे विच काम कीता मरदानी 1, 2, 3 तक आ चुकियां ने और ये फिल्मां भी उन्हां दे बैनर तले बनदियां ने और सुपर डुपर हिट हो रही ने और ये काम उन्हां दा जारी है और नवे कलाकारां नूं मौका देना भी उन्हां दा जारी है असी वधदे हां अगे और इस प्रोग्राम दा अखीरला ट्रैक तुहाडी पेश खिदमत है और उम्मीद है कि अज दा ये सफ़र फिल्मी सफ़र तुहानूं मज़ेदार लगा होएगा वधदे हां इस ट्रैक दे नाल अगे और अगला पड़ा तो हड़ा इंतजार कर रहा है फिल्मी दुनिया नू इत्थे दिंदे आं ब्रेक।

पेश ने एफएम न्यूज हेडलाइंस। सरकार ने आज मुड़ भरोसा दवाया है कि भारत कोल कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस ते एलपीजी दी काफी सप्लाई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 ले यात्रियों दी चोन ले ड्रा कढ़िया। यात्रा जून च शुरू होएगी ते अगस्त च समाप्त होएगी। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने खेतीबाड़ी च एक नवा आलमी मॉडल पेश कीता है। अफ्रीका च सेहत स्थिति विगड़न कारण भारत अफ्रीका फोरम सम्मेलन मुलतवी। केंद्रीय रेलवे राज मंत्री रवनीत सिंह ने कहा है कि रेलवे ओवरब्रिज की उसारी तो बाद लेवल क्रॉसिंग नू बंद करना हुण लाजमी नहीं है। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने दो व्यक्तियों नू हैरोइन ते पिस्तौलों समेत गिरफ्तार करके नशीले पदार्थों ते गैर कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। अमृतसर के अनगढ़ इलाके च एक घर के अंदर नाजायज पटाके बनाउण करके हुए भयानक धमाके ते अग लगण के हादसे दौरान एक औरत की मौत ते एक बुरी तरह जख्मी। पंजाब ते हरियाणा च 26 मई तक जबरदस्त गर्मी ते तेज हवावां दे कई हिस्सों नू प्रभावित करन दी संभावना है। एसएन एफएम न्यूज हेडलाइंस हुण तो कुछ पलां बाद तुसी साडा अगला प्रोग्राम इंजॉय करोगे मस्ती जंक्शन।

हेलो हाय नमस्कार, एक बार फिर तो स्वागत है जी। और हुण नहीं लैनी कोई भी टेंशन, नहीं होनी चाहिए तुहाडे दरमियान कोई भी अनबन, हो जाओ पूरी तरह नाल टेंशन क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया मस्ती जंक्शन। और मस्ती जंक्शन प्रोग्राम दे विच शिरकत जिवें कि तुहाडे भी हुंदी है, और जेकर तुसी चाहुंदे हो मेरे नाल गलबात करनी और मस्ती नू चार चन्न लाउणे, तां छेती छेती फिर अपना फोन चक्को और मेरे तक नंबर डायल करो। 2342-174 साडा नंबर है, 0181 लाउणा तुसी मेरे तक पहुँचना है और फिर मेरे फनी फनी वाले सवालों ने जवाब देने ने। देखना अज मैं कि तुहाडे अंदर किन्ना क टैलेंट भरिया पिया, किन्ने कि तुसी टैलेंट दे भरपूर हो कि तुसी मेरे सारे सवालों के जवाब सही सही दे सकते हो। हाँ जी, 107 FM रेनबो ते मैं तुसी और असी कट्ठे मिल के इस प्रोग्राम नू इंजॉय करांगे। और इस प्रोग्राम दे विच तुसी मैं ते मस्ती, मतलब ये तीन चीज़ों तो इलावा इस प्रोग्राम दे विच होर कुछ नहीं होएगा, क्योंकि मस्ती दे अंदर ही सब कुछ है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। आरो वेर इस ट्रैक नू इंजॉय करते हैं और मैनू इंतजार है तुहाडियां फोन कॉल्स दा। इस ट्रैक नू इंजॉय करते हैं, तो आ की कह रहे ट्रैक सुनते हैं।

0: सब गोलमाल है। हां जी सब 107 FM रेनबो ते हरीश नाल है तुहाडे और इस वेले प्रोग्राम चल रहा है तुहाडा फेवरेट वाला और इस प्रोग्राम दे विच यानी मस्ती जंक्शन दे विच मस्ती नहीं होनी ते होर की होना है और ए मस्ती दे विच शामिल होण दे लई हिस्सा बनण दे लई इस प्रोग्राम दा एक होर कॉलर मेरे नाल जुड़े ने। आओ गल करदे हां उहनां दे नाल। हैलो
1: सर जी, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं कुलदीप सिंह बोलदा, पिंड लाधियां सुर जिला लुधियाना।
0: बड़ी सुरीली जी आवाज लगन दी कुलदीप जी तुहाडी और एक सुरीली जी आवाज दे विच मैनू लगदा है कि तुसी कोई रोण वाला गाना सुना सकदे हो मैनू हसदे हसदे।
1: सर जी मैं छोटा दोस्त 31 साल पुराना।
0: 25 साल पुराने हो ते हुण की गल, पुराने लोग पुराना बंदा कोई गाना नहीं सुना मतलब हस नहीं सकदा। हसे नहीं थी 25 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
1: ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਕਹੋਂ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਂਗੇ ਹੱਥੇ।
0: ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ, ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਮੋਹ ਲਿਆ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਆ ਹਾਸਾ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? थोड़ी क्या तुहानू हसण लई किहा, इक कोई हासा आंदा जी इस तों बाद बस
1: अगे
0: महाराज डायलॉग नहीं बोलना, डायलॉग नहीं बोलना तुहानू महाराज हसण लई किहा तुहानू कुलदीप सिंह जी। हाँ जी महाराज, हाँ जी मैं मेरी एक होर
1: हुक्म करो मारको
0: इदा हुंदा मतलब अलग अलग तरीके दे हासे नु कहंदे। आए आए हाय, मैनू लगदा तुहाडे
1: सारे बाधे रहो जी।
0: थैंक यू सो मच मैनू कॉल करन दे लई कुलदीप जी।
1: हां जी
0: थैंक यू सो मच कॉल करन दे लई कुलदीप जी। और जेकर तुसी भी मेरे तक पहुंचना चाहुंदे हो और मौज मस्ती दे विच शिरकत करनी चाहुंदे हो, मस्ती जंक्शन दा हिस्सा बनना चाहुंदे हो, तां देर ना लाओ, छेती छेती मेरे तक पहुंचो। 2342-174 ए नंबर डायल करना, 0181 लाओ मेरे तक ए नंबर डायल करके पहुंचो। ते फिर सवाल मैं तुहानू पहलां दस दिया ते फिर तुहानू सब कुछ पता लग जाए। तुसी तैयारी दे नाल मेरे तक पहुंचो ते फिर तुसी इस गेम नूं जित जाओ, तुसी इहो ही चाहुंदे हो। बट सवाल मेरे कोल ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 107 FM ਰੇਨਬੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਤੀ ਜੰਕਸ਼ਨ।
2: ਗਾਣਾ ਨ ਆਇਆ ਬਜਾਨਾ ਨ ਆਇਆ ਦਿਲ

0: हरी की सड़क टेढ़ी है देसी राग की ई ई ई ई चल मोड़ ले टमटम गले को गर्म कर ले गले को गर्म कर ले छोड़ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम हाँ अंग्रेजी में एक एटम
1: हरीश हाजर है और लिसनर्स भी हाजर ने मेरे और जो मेरे तक पहुंचना चाहते ने आई नो के नंबर डायल कर रहे हो नंबर जिन्हानू नहीं पता मतलब हो जाता बंदे कदों कदी कदी दिमाग चो चीजा स्लिप कर जांदियां स्किप कर जांदियां 2342174 ये नंबर है जी 0181 लाओ 0181 2342174 डायल करो तो मेरे तक पहुँचो जिमें ये पहुँच गए एक लिसनर मेरे तक गल करते उन्होंने नाल हैलो
2: हैलो हाँ जी सर जी सत श्रीकाल
1: जी कौन गल कर रहे हो जी
2: सर मैं प्रभजोत कौर जलंधर रामा मंडी
1: प्रभजोत कौर जी थोड़ी आवाज तो मैं क्यों लग रहा कि तुम बड़े गुस्से वाले हो सही गल है
2: नहीं सर
1: नहीं अपने हसबेंड कुछ कह रहे हो प्यार भरी पोएट्री टाइप बट उस गुस्से कहना गुस्से च सुना सुनाओ जरा छेती छेती
2: थोड़ा
1: चको थोड़ा जा माड़ा जा गुस्से दा लेवल होर वधाओ माड़ा जा इधर वधा रहा मैं थोड़ा जा होर आन दियो क्यों फिर की हुंदा फिर आलू नहीं आते डर वाली कविता सुना दियो कोई जिन्ना खौफ तुहाडे अंदर मैनू लगन डिया खौफ भरी कविता सुना दियो मैनू कोई चलो नहीं नहीं ना खौफ ते ना डर हस के विखा दियो हुण खुल के जरा आसे पासे ते नहीं हैगे महाराज
2: लागे
1: शागे ते
2: नहीं
1: है पल्ले बन ले मेरी गल समझ रहे हो ते हुण अज तो बाद मतलब गल करन लगया ओ बंदा तुहाडे तो डरे तुसी नहीं डरना ठीक है कि नहीं गलबात करनी तो फिर छेती छेती मेरे तक पहुंचो और नंबर डायल करना 2342174 और यह नंबर डायल करके तो फिर मौज मस्ती होगी गल्लां बातां और देखते हैं किन्ने क टैलेंटेड हो तुसी हले तक मैनू कोई इन्ना टैलेंटेड बंदा लभा नहीं जिहदे अंदर इन्नी गलबात होवे और सही तरीके दे नाल मेरे सवालों के जवाब दे पाए और मौज मस्ती दे विच अपना योगदान पा पाए ना ना ना गल बनी नहीं पर गाना जरूर गल बनाएगा

0: माँ सोलर पैनल लगा ले, सोलर पैनल लगा ले। कदों तो मेरे सारे दोस्त बोलते सन, पर मैं उदो मन्निया जदों प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैं प्रधानमंत्री जी दे कहन ते सोलर पैनल लगवाया, हुण मेरा बिजली दा बिल जीरो आया। तुसी भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करो। PM सूर्य घर .gov.in।

0: 107 FM रेनबो ते हरीश दी आवाज थोड़े तक पहुंच रही और प्रोग्राम चल रहा है मस्ती जंक्शन। और जेकर तुसी भी मस्ती जंक्शन दा हिस्सा बनना चाहुंदे हो, इस मस्ती दे विच शिरकत करनी चाहुंदे हो, तां 2342-174 नंबर डायल करके तुसी मेरे तक पहुंच सकदे हो। एक कॉलर जुड़े ने साडे नाल, गल करदे हां उहनां दे नाल। हैलो
1: हैलो मारी नाम भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे जी?
1: मास्टर मोहन लाल जलंधर बूटा मणि जी।
0: मास्टर मोहन लाल जी, स्वागत है प्रोग्राम दे विच जी। मेरे सवाल दा जवाब दियो। मैं तुहानू सवाल पुछना पर तुसी मैनू जवाब नहीं देना। हां मैं तुहानू सवाल पुछना पर तुसी जवाब नहीं देना।
1: शौकी
0: जी, महाराज किन्ने साल दे हो गए तुसी शौकी जी?
1: महाराज जी मेरी समझ सारी उम्र लंघ रेडियो नाल ही।
0: ओ फिर जवाब थोड़ी देना, तुसी जवाब दे जांदे मेरी गल दा, इही तां गेम ही, तुसी हार गए शौकी साहब।
1: ठीक है जी।
0: और जेकर तुसी भी मेरे तक

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, वो नटखट वो खटपट वो पनघट वो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: గుజరియా मस्ती जंक्शन प्रोग्राम दे विच तुहाडे कॉल्स दी वेट मैं कर रहा और ए वेट पूरी हो रही है एक होर कॉल दे नाल लिसनर मेरे तक पहुंचे ने। हेलो
1: हेलो
0: हेलो कौन गल कर रहे हो जी? नमस्कार। हेलो महाराज, हेलो करके किथे गुआच गए हो तुहाडी? मैं गल हां जी महाराज,
1: हां जी सर,
0: हां जी हां जी।

0: हरीश गल कर रहे हैं जी, तुसी कौन गल कर रहे हो?
1: मैं जी राकेश बोल रहा हूं, जलंधर से।
0: राकेश गल कर रहे हो?
1: हां जी हां जी।
0: किथों?
1: जलंधर से जी।
0: जलंधर तो किथों गल कर रहे हो?
1: अपने जी एकता नगर।
0: हां जी,
1: एकता नगर,
0: प्रीतम नगर तो गल कर रहे हो तुसी? और हां जी, और प्रीतम जी, फिर प्रीतम नगर तो राकेश जी, देखो देखो कैसे प्रीत ऐसी चीज है कि जिथे प्रीत आ जाती उथे बंदा गड़बड़ा जाता है कि नहीं? और फिर मेनू मेरे सवाल का जवाब दोगे? एक सोखा जे भाई है। हां फिर ऐदा करो, एक खबर सुनाओ हसदे हसदे, गंभीर जी खबर। ऐदा तुहानू खबर मैं दिना, खबर यह है कि तुहाडे घर दे नाल एक घर दे विच हो गई है चोरी, इहनू तुसी हस हस के सुनाना। ओ पता की होया अज इत्थे साडे नाल दे घर दे विच, ऐदा करके सुनानी है, सुनाओ जरा। ओ महाराज अच्छा फिर फिर अगे उस तू बाद भी हस हस के सुनानी, पर फिर काफी हद तक तुही कामयाब हो गए हो खबर सुनान दे विच। एदा धन्नवाद जी, धन्नवाद। ਇੱਦਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 8:51 'ਤੇ 47 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ FM ਘੜੀ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਹਾਂ ਹੋ ਤੁਮ, ਚਲੇ ਆਓ ਚਲੇ ਆਓ ਚਲੇ ਆਓ। 2342-174 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, 0181 ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ 1017 FM ਰੇਨਬੋ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਵਾਲਾ ਮਸਤੀ ਜੰਕਸ਼ਨ।

पेश नहीं एफएम न्यूज हेडलाइंस। वणज के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद भाईवाल वजों देख रही है। भारत ने सरहद पारों दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी का मुकाबला करने लई ठोस विश्वव्यापी यत्ना लई कहा है। सरकार ने भरोसा दिता है कि देश कोल कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस ते एलपीजी का ढुकवा भंडार है ते मंग नू पूरा करन लई तेल सोध कारखाने पूरी समर्था नाल कम भी कर रहे ने। हाल ही च रेल गड्डियां च अग लगण दीआं घटनावां च समाज विरोधी अंसरां दी शमूलियत का खुलासा होया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस साल की कैलाश मानसरोवर यात्रा लई श्रद्धालुओं की चोण करन वास्ते एक कंप्यूटर ड्रॉ कढ़िया। इस साल की यात्रा जून च शुरू होएगी ते अगस्त च खत्म होएगी। झारखंड च सीपीआई मोइस्ट दे 25 नक्सलियों ने हथियारां समेत पुलिस अगे आत्म समर्पण कर दिता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले च एक वाहन दे डूंगी खड्ड च डिगण कारण दो औरतां समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। अमृतसर के अनगढ़ इलाके च एक घर अंदर नजायज पटाके बनाउण करके होए भयानक धमाके ते अग लगण दे हादसे दौरान एक औरत की मौत ते एक बुरी तरह जख्मी। काउंटर इंटेलीजेंस अमृतसर ने दो व्यक्तियों नूं हैरोइन ते पिस्तौलां समेत गिरफ्तार करके नशीले पदार्थां ते गैर कानूनी हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। देश दे उत्तर पछमी ते केंद्री हिस्सों च गर्मी ते लू दा कहर जारी। एसएन एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। हुण तों कुछ कु पलां बाद तुसी साडा प्रोग्राम इंजॉय करोगे दिल चाहता है।

हाजिर हाँ जी, एक बार फिर तो मैं और इस वे प्रोग्राम जिसका आगाज मैं कर दिता है और मैनू पता है तुहाडा फेवरेट वाला प्रोग्राम है। और जिंदगी दे विच जदों कोई चीज़ साडे कोल नहीं हुंदी, असी उसकी कामना करते हैं, वह सानू मिल जाए तो फिर जिंदगी लगता कि बड़ी खुशनुमा हो गई और रब साडे ते मेहरबान हो गया। अज कुछ उदा दा तुहाडे नाल होण वाला है, क्योंकि जो तुसीं इस वेले मंग कर रहे हो, मतलब चाह रहे हो, चाहुंदे हो, दिल तो आवाज़ां लगा के और दिल तक पहुँचा रहे हो साडे, यानी FM रेनबो दे, वो साडे तक मेरे तक पहुँच गई है और ओ तुहाडी मंग मैं जरूर पूरी करांगा महाराज, फरमाइश जो तुसीं मेरे तक भेजी है। और क्योंकि ये प्रोग्राम ही साडा तुहाडे लई है और तुहाडा खास प्रोग्राम दिल चाहता है, और मैनू पता तुहाडा दिल इस वेले चाह रहा है कि छेती छेती तुहाडियां फरमाइशां पूरियां होण और तुहाडे फेवरेट जिहड़े तुसी गाने लिख के मेरे तक फरमाइश कीती है, व्हाट्सएप कीते ने, मेरे तक पहुँचाए ने, वो फरमाइश पूरी होवे जरूर होएगी। और मेरे लिसनर जो इस वेले हुणे हुणे मेरे नाल जुड़े ने और उन्होंने दस दें कि 9855 10 10 27 साडा व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर ते तुसी मैनू व्हाट्सएप कर सकदे हो जेकर तुसी अपना फेवरेट गाना बॉलीवुड या पॉलीवुड का कोई भी ट्रैक सुनना चाहते हो। तो मैं इत्थे ही हां महाराज, तुसी फटाफट मेरे तक मैसेज पहुँचाना है तो फिर गाना तुहाडे रेडियो सैट्स ते होना है, बिल्कुल होना है महाराज। ये मैं झूठ नहीं कह रहा क्योंकि मैं झूठ बोलता ही नहीं, एक गाना देखो, इस तो बाद तुहाडे ही फरमाइशां पूरियां होनियां।

0: गीत गपची गपची गम गम ओ सनम हम दोनों साथ रहें जन्म जन्म। फिल्म त्रिशूल दा ये गाना, आवाज लता मंगेशकर नितिश मुकेश, गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा अलका मिड्डा सर धन्यवाद थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए। एक होर मैसेज भेजे साढ़े लिसनर पढ़ते हैं जी। नमस्कार हार्दिक अभिनंदन दिल चाहता है मैं किसी भी गीत में शामिल कर लें जी धन्यवाद जी। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा मैसेज मेरे तक पहुँचे थैंक यू ये मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए। तो आओ फिर ये गम गम वाला गाना असी इंजॉय करते हैं।
1: गम गम

आपको भी नमस्कार जी, थैंक यू सो मच मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए। तो थोड़ी फरमाइश जरूर पूरी करदा जी, मैं जरूर सुनना थोड़ी फरमाइश वाला गाना। अगला मैसेज है जी, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस माऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा माऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आपका धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच, थोड़ा भी धन्यवाद मैसेज मेरे तक पहुँचाने के लिए। और आज फिर ये ट्रैक असी इंजॉय करते हैं जी, मैं तेरे प्यार में पागल, प्रेम बंधन फिल्म का।

आगाज आगाज हो चुका है तुहाडे फेवरेट वाले प्रोग्राम शामे गजल दा। जिवें ही रात ढलदी है तां इस रात दे राही साढ़े तक बहुत कुछ सानू मिलता साढ़े तक पहुँचदा है किसे विछड़ गए दा प्यार उस विछड़ गए दी याद और वो चीज़ां याद आउंदियां ने जो कदे साढ़े नाल साढ़े कोल हुंदियां सी वो चीज़ां आज साढ़े कोल नहीं है वो साथ वो प्यार और वो एहसास हकीकत कहूँ तो तुझे ख्वाब लगता है शिकायत करूँ तो तुझे मजाक लगता है कितनी शिद्दत से याद करता हूँ मैं तुझे लेकिन तुझे ये सब कुछ इत्तेफाक लगता है ना।

कुछ लोग किताबों की तरह होते हैं, हर बार पढ़ने पर एक नया एहसास देते हैं। कुछ लोग बारिश की तरह होते हैं, पल भर में आते हैं और सारी प्यास बुझा जाते हैं। और कुछ लोग खामोशी की तरह होते हैं, हमेशा पास रहते हैं मगर कभी खुद को महसूस नहीं होने देते। तुम मिले तो लगा जैसे वक्त ने ठहर कर कहा हो, कुछ रिश्ते मुकम्मल होने के लिए नहीं, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए होते हैं। तुम मिले तो हर जर्रा हर पल महक गया, खूबसूरत हो गया।

हम जो हैं जरा पुराने मिजाज के हैं, हम आज भी रिश्तों को संभाल कर रखते हैं। जो एक बार किसी को अपना कहा, उम्र भर उसका पूरा ख्याल रखते हैं। हमें जरा सादगी से चलना पसंद है, हम अपनी सीधी सी चाल रखते हैं। जो भी दिल में है सीधा बोल देते हैं। जहन में ना फालतू सवाल रखते हैं, अगर कोई जाए हंस के

किसी को अपना कहा, उम्र भर उसका पूरा ख्याल रखते हैं। हमें जरा सादगी से चलना पसंद है, हम अपनी सीधी सी चाल रखते हैं, जो भी दिल में है सीधा बोल देते हैं, जहन में ना फालतू सवाल रखते हैं, अगर कोई जाए हंस के तो उसे हंस के विदा करते हैं। गुजरों का नहीं कोई मलाल रखते, हमें पसंद है खुश मिजाजी बेखबर, हम वे नहीं जो जीना मुहाल रखते हैं। कोई हंस कर आए या हंस कर जाए, हम हमेशा मुस्कुराते हैं। तुम्हारे जाने के बाद भी देख मुस्कुरा रहे हैं ना।

नसीब में नहीं है तू, फिर भी मेरा अपना सा है। तुझे पाने की जिद नहीं, तू बस एक हसी सपना सा है। दूरियों का ये आलम ही हमें बस साथ जोड़े रखता है। बसाने की कोशिश में ये रिश्ता कच्चा सा है। तेरे बिना भी तुझे जीना सीख लिया है मैंने, तेरे बिना भी अब जीना सीख लिया है मैंने। तन्हाई के जहर को अमृत की तरह पी लिया है मैंने। तू मुकम्मल ना सही पर मेरा सबसे प्यारा एहसास है। यही फासला काफी है मेरी वफा आजमाने के लिए, है ना। किसी को मोहब्बत करने के लिए किसी का पास होना लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है, है ना।

पता है, एक अजीब सी बेचैनी चल रही है सीने में। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, वो बस खालीपन सा महसूस हो रहा है, मानो मानो जैसे किसी ने बहुत बहुत कुछ देकर छीन लिया हो एक बार में ही। सच कहूं तो तुम्हारी कमी महसूस हो रही है मुझको, मेरे दिल को तुम्हारी जरूरत है, तुम नहीं हो तो सब खाली खाली लग रहा है।

तुम्हारे प्यार की जरूरत, तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही है। वो प्यार जो मैं कभी भुला नहीं पाया और ना ही कभी भुला पाऊंगा, क्योंकि सब तुम्हारा है और प्यार भी तो तुम्हारा है, कैसे भुला दूं भला।

एक प्यार का नगमा है जिसका आगाज हो चुका है साडा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम दे विच तुहाडे लई रेट्रो ट्रैक्स और मेरिया गल्लां और ए होर भी ज़्यादा गहराउंदी हुई रात तुहानू होर भी खूबसूरती का एहसास दवाएगी इन्हां गाणियां दे नाल, क्योंकि इन्हां गाणियां दे विच ओ एहसास ने जो एहसास असी सिर्फ फील करते हैं उन्होंने किसी दे नाल शेयर नहीं करते, बट ए ट्रैक ए गाने

नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरी एक मुस्कान ही काफी है। तुम मेरे दिल में बसे रहो, ये अरमान ही काफी है। हम ये नहीं कहते कि तुम मेरे पास रहो या मेरे पास चले आओ, बस हमें याद रखना तुम्हारा ये एहसान ही काफी है। उम्मीद है कि तुम याद रखोगे मुझे, इन मुलाकातों को, मेरी बातों को।

कभी कभी सोचता हूं कि मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज क्या है, फिर हर बार तुम्हारा नाम मेरे दिल में आ जाता है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो मेरे लिए, तुम वो एहसास हो जो मेरे हर दर्द को सुकून में बदल देता है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बातें, तुम्हारी छोटी छोटी आदतें, सब कुछ मेरे दिल में ऐसे बस चुका है जैसे सांसों में जिंदगी।

मुझे नहीं पता भविष्य क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। मैं तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें अपनी दुआओं में महसूस करता हूं। जहां किसी को खोने का डर भी हो और उसे हमेशा कुछ खुश देखने का मन कहे और चाहत हो, उसके बिना दिल नहीं लगता, बिल्कुल भी कहीं लगता ही नहीं उसके सिवा।

मुझे लगता है कि पसंदीदा इंसान से आत्मा का संबंध होता है, उससे कभी कभी दिल ही नहीं भरता, फिर चाहे हमेशा हमेशा के लिए उससे रिश्ता टूट क्यों ना जाए या कितनी भी दूरियां पैदा क्यों ना हो जाएं, वो याद बनकर कील की तरह हृदय में ठुक सजाता है। जब तक सांस चलती है उससे बात होती रहती है, लफ्जों के साथ नहीं ना, कभी ख्यालों में, कभी जिंदगी के सवालों में। रिश्ता खत्म होने के बाद भी ये बातचीत जारी रहती है और ये बात किसी और को सुनाई नहीं पड़ती, किसी के कानों में नहीं जाती सिवाय उस शख्स के।

इंतजार सिर्फ समय बिताना नहीं होता, यह एक एहसास होता है जो दिल में चुपचाप से बस जाता है। जब कोई खास इंसान दूर होता है तो हर छोटी छोटी चीज उसकी याद दिलाने लगती है। फोन की हर नोटिफिकेशन पर लगता है शायद उसी का मैसेज आया होगा। दिन तो किसी तरह गुजर जाता है लेकिन रातें अक्सर सवालों में कटती हैं। इंतजार में सबसे मुश्किल बात यह होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि वो इंसान वापस आएगा या नहीं। फिर भी दिल उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि सच्चा इंतजार वही करता है जिसे किसी के आने पर पूरा भरोसा होता है ना? हमें तो है, क्या आपको है भरोसा?

मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, शायद उतना जितना सुबह सूरज का इंतजार करती है। तुम्हारा नाम सुनते ही ये दिल मुस्कुरा देता है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी पसंदीदा चीज पा लेता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम सिर्फ इंसान नहीं, मेरी हर दुआ का जवाब हो, मेरी हर अधूरी ख्वाहिश का ख्वाब हो। इस प्रोग्राम नूं इत्थे खत्म करन दा वेला आ गया और साडा सफर भी इत्थे खत्म हुंदा है। जिंदगी दे सफर च दोबारा मुलाकात होएगी तुहाडे नाल, और तद तक लई बाय बाय, टेक केयर। और इस प्रोग्राम दा अखीरला ट्रैक पेशे खिदमत है।

एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल है। इस वेले रात के 11 बज चुके ने ते साडी अज दी सभा दे सारे प्रोग्राम इत्थे खत्म हुंदे ने। सवेरे 5:55 ते तुहाडी सेवा च मुड़ तो हाज़र होवांगे। तद तक